0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ ब चार छ नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

जी हाँ, समय प्रोग्राम रोशन सुबुह में वहाँ के इंतज़ार हों वहाँ के ओसियड़ो हों सवाल जो तो असो अज जो सवाल है वो मुनफरद सवाल है उन सा लागापल जी अवान लाइ खुशी है वह तमाम बेहतरीन होंगी असो जो सवाल जो अज सही जवाब दी तो अस उन पसंद जो कलाम भी हलाइंदी असन पसंद से थोड़ा मुख्तसर तारुफ भी कराइंदी पर सवाल जो पर्यों पर्यों बुझाई असो अज सवाल है तो पेट्रोल जो अज केतो अघ है पेट्रोल जो अघ रोज नवा मटजन पाया पेट्रोल अघ रोज नव चेंज थे पो तजोको अघ बुधा तो पेट्रोल जो अज अघ कड़ो है उनमें अवान सवल बुधा अवान रुपया भी बुधा अवान पैसा भी बुधा जो बिल्कुल परफेक्ट सही जवाब दी पर्यों सही जवाब दी तो उन पसंद जो कलाम भी हलाइंदी अस उन मुख्तलिफ मुख्तसर तारुफ भी कराइंदी अवां असां ॾे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था जेके असांजा दोस्त प्रोग्राम में हाणे हाणे आन थिया आहिनि या जेके असांजे रेडियो पहिरियों दफ़ो ॿुधनि था त असां उनखे तरीक़ेकार ॿुधाईंदा हलूं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु कीअं थी सघो था। असांजे प्रोग्राम में शामिलु अव्हांखे थियण लाइ तमामु आसान तरीक़ो ॿुधाईंदासीं। SMS जो आसान तरीक़ो आहे त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते LRK लिखी यानी लाड़काना LRK लिखी स्पेस ॾींदव उन बाद तव्हां पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां सेंड कंदव 888 ते यानी 888 ते तव्हां सेंड कंदव। ऐं जेकॾहिं असांजा दोस्त फेसबुक ते प्रोग्राम ॿुधनि पिया त असांजी ID आहे GAFM88 असांजी प्रोग्राम जी ID आहे। फेसबुक जो असांजो पेज आहे तव्हां उन ते बि असांखे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं असांजो मोबाइल आन आहे असांजे स्टूडियो में 10 बजे आन थींदी तव्हां मोबाइल ते बि असांखे नंबर ते बि कॉल करे पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88 जी हा नंबर तमामु आसान आहे 0332-1322-88 असांजे प्रोग्राम जे में अॼु जो सवाल आहे त पेट्रोल जो अघु केतिरो आहे। जी असांजा तव्हांखे सवल ॿुधाइणा आहिनि अव्हांखे रुपया ऐं पैसा ॿुधाइणा आहिनि ऐं कोशिशि कयो ड्रोड़ो ड्रुको वञो पेट्रोल पंप ते ऐं उनजो रेट अघु ॾिसी अचो त केतिरो आहे।

ऐं साईं जा चयो वञे थो त वाकई दिलि बि टुटंदी आहे। चयो वञे थो त जेकॾहिं ओचितो ॾुख वारी ख़बर ॿुधण सां दिलि वाकई टुटी सघे थी, ऐं जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ खे ओचितो ॾुख भरी ख़बर ॿुधाई वञे त उन जे दॿाउ सबबि दिलि खे झटको लॻी सघे थो ऐं दिलि दर्द विचां टुटी बि सघे थी। पर हीअ सुठी ॻाल्हि बि ॿुधाई वई आहे त उहे टुटल दिलियूं वरी जुड़ी बि सघनि थियूं। ऐं साईं मुंहिंजा चवनि था त कुझु हफ़्तनि में दिलि सही थी वेंदी, ऐं खोजना मुताबिक़ अहिड़नि 19 मरीज़नि खे शामिलु कयो वियो जेकी दिलि जी तकलीफ़ में मुबतला हुया ऐं सीने जे सूर में साह जे रुकिजी वञण बीमारीअ में आरज़ी शिकायत जी दाह खणी इस्पताल आया हुआ। अहिड़नि मरीज़नि में वधि तादादु पोढ़ियुनि औरतुनि जो हुयो। माहिर चवनि था त अहिड़नि मरीज़नि जी रत में स्ट्रेस हार्मोन जो मिक़दार वधी वञे थो जेकी दिलि जे लाइ नुक़सानकार आहे। अहिड़नि मरीज़नि खे दिलि जी तकलीफ़ खां अॻु जज़्बाती ॻाल्हि जे करे धचको लॻो हुयो त साईं मुंहिंजा कोशिशि कयूं त असां अहिड़ी ॻाल्हि न कयूं अहिड़े कंहिं दिलि जे कमज़ोर माण्हू सां जो हुन जी दिलि टुटी पए। ऐं चवंदा आहिनि त जेका अचानक ख़बर मिलंदी आहे या अचानक दिलि टुटंदी आहे उहा ठीकु बि थी वेंदी आहे। पर मास्टर मंज़ूर खे ॿुधूं पिया त दिलि जी कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ऐं गाड़ी जी रजिस्ट्रेशन जी तारीख लिखी 97-71 ते सेंड कयो तस्दीकी मैसेज अचण बाद पेट्रोल पंप वञण खां पहिरीं DOK लिखी वरी 97-71 ते सेंड कयो ऐं टोकन हासिल कयो पंप ते टोकन ॾेखारे सब्सिडी हासिल करे सघिजे थो।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए, और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रिया और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर। 03003103105109 03005109।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

कमीशन हूंदी आहे उहा बिल्कुलु रखंदा आहिनि, पर पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े में पंहिंजे पंहिंजे शहर सिटीअ जो अघु पंहिंजो पंहिंजो हूंदो आहे। रुपए ॿ रुपया उहो मथे बिल्कुलु रखंदा आहिनि, उहो हुनजो हिकिड़ो महिनत आहे। बहरहाल जेको गवर्नमेंट जो अघु आहे, सरकारी अघु आहे, पेट्रोल जो फी लीटर जे हवाले सां, डीज़ल कोन पिया पुछूं, पेट्रोल अघु पुछूं पिया, त अॼु जेको अघु बीठल आहे, छो त जुमे ते जेको नओं रेट हुयो उहो हुयो, हुन ऑर्डर थियो गवर्नमेंट जो, त हिन वक़्तु जुमो छंछर आचर अॼु सूमरु आहे, त अॼु गवर्नमेंट जो सरकारी अघु पेट्रोल जो फी लीटर जे हवाले सां केतिरो आहे अव्हां खे ॿुधाइणा आहिनि 7 रुपया ऐं पैसा। अव्हां जेकॾहिं असांजो प्रोग्राम हींअर ॿुधो पिया या असांजा जेके नवां दोस्त प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहिनि पिया, त असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे ऐं SMS करण जो बिल्कुलु आसान तरीक़ो आहे। तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, तव्हां उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो, पंहिंजो नालो, पंहिंजे घोठ जो नालो ऐं तव्हां सवाल जो सही जवाबु लिखी करे 888 ते तव्हां सेंड कंदव, त असां ॾे सवालु पहुची वेंदो। जेकॾहिं असांजा नवां दोस्त प्रोग्राम फेसबुक ते ॿुधनि पिया, त असांजी ID आहे फेसबुक GFM88 जी ID आहे, असांजो फेसबुक जो पेज आहे, तव्हां उन ते बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं असांजे स्टूडियो में मोबाइल बि आन आहे ऐं जेको आहे तव्हां मोबाइल ते बि कॉल करे पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु लिखाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। साईं मुंहिंजा अॼु 14 सेप्टेंबर आहे ऐं सुभाणे 15 सेप्टेंबर आहे। सुभाणे याने 15 सेप्टेंबर ते जमहूरियत जो आलमी ॾींहुं मल्हायो वेंदो ऐं जमहूरियत जो आलमी ॾींहुं अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल ऑफ डे पंहिंजो हर साल 15 सेप्टेंबर ते बैन अलाक़वामी पार्लियामेंट यूनियन जे तहत मल्हायो वेंदो आहे ऐं हिन ॾींहं जी शुरूआति सन 2008 में थी। अक़वामे मुतहिदा जे जनरल असेंबली में साल 2007 में पंहिंजी 62वीं सेशन जी एजेंडा नंबर 12 जी करारदाद नंबर 7/62 वसीले हिकु करारदाद मंज़ूरु करे हर साल 15 सेप्टेंबर वारे ॾींहं खे जमहूरियत जो आलमी ॾींहुं करे मल्हाइण जो ऐलान कयो। हिन ॾींहं जे मल्हाइण जो मक़सदु बैन अलाक़वामी तौरु जमहूरियत पसंद जी हिमायत करणु आहे ऐं मुल्कनि में हुकूमती सतह ते जमहूरियत खे वधण लाइ क़दम खणणु आहे। त साईं मुंहिंजा इहा थोरी मालूमात तव्हांखे ॾिनी सी पंहिंजो जमहूरियत जे हवाले सां। हाणे वरी ख़ूबसूरत नगमो अव्हां जे नाम पिया कयूं।

नाला सां ज़रूर खणंदासीं, पर जेको पहिरें नंबर ते सवाल जो जंहिंजो सही जवाबु हूंदो, पहिरें नंबर ते जंहिं कॉल कई हूंदी उनजो तारीफ़ बि मुख़्तसिर हलाईंदासीं, उन जे पसंदि जो कलाम बि हलाईंदासीं। अव्हां खे ॿुधाइणो आहे त पेट्रोल जो सरकारी अघु फी लीटर केतिरो आहे। साईं, मुंहिंजा उमिरि जे वधण ते घणो कुझु हिकु ई वक़्तु ऐं असां पंहिंजे खुराक ते वधण वक़्तु क़ाबू रखंदा आहियूं ऐं मुतहरक रहण जी कोशिश कंदा आहियूं, पर जॾहिं असां उमिरि जी हिकु ख़ासि सतह ते पहुची वञूं था त पंहिंजो वज़न क़ाबू करणु ॾुखियो थी वेंदो आहे। ऐं ताज़ो नई तहक़ीक़ यानी रिसर्च सबबु मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जी केतिरा ई किलो वज़न वधण जो सबबु बणि ॼाणण में मदद मिली आहे। ऐं ॿाहिरनि मुल्कनि जे तहक़ीक़ाती इदारनि जो ख़्यालु आहे त उनजो जिस्मानी चर्बी में तब्दील जे अमल सां को वास्तो न हुजणु घुरिजे। चर्बी ॻारण जो अमल इंसानी जिस्म जी उहा सलाहियत जंहिंखे चर्बीअ जो ज़ख़ीरो चई सघिजे थो ऐं ज़रूरत मूजिबि उनखे ॻारे सघिजे थो। साईं, मुंहिंजा असांजे जिस्म में जेका वाधि आहे, जेको वज़न आहे, उन में ख़ासि करे चर्बीअ जो वधी वञणु आहे। असां पंहिंजी खुराक ते कंट्रोल कंदासीं, असां पंहिंजे खाइण पीअण ते कंट्रोल कंदासीं त असांजो कोलेस्ट्रोल न वधंदो, असांजी चर्बी न वधंदी ऐं चर्बी वधण सां असांजे जिस्म में काफ़ी बीमारियूं जनम वठंदियूं, उहो तमामु घणो नुक़सानु आहे। जेतिरो थी सघे त असां कोशिशि करे पंहिंजा खाधा जेके आहिनि सब्ज़ियूं इस्तेमालु कयूं ऐं खाधा अहिड़ा खाऊं जेके नुक़सानकार न हुजनि।

जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह जारी उसारी है तवां जो असा जो साथ रहंदो ठीक जारे वगी तई सवाल गोलिंदा रहो ए जवाब दींदा रहो असा हन तलाऊं प्या कमर्शियल ब्रेक जी तरफ वरी वापस इंदासी कदे भी न मन पियो।

0: It's done.
1: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot, a name to be trusted.
2: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariya, Dastyab Ain.
1: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
2: Rabte Lai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, Ai 0242-460100.
3: उम्मीद के दिए जलते हैं,
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
5: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
6: हथे गुलमी दी पेरे गुलमी दी।
7: आई अदी, अज ते डाडी खुश पे नजर अची।
8: छो न खुश थे आदी, जदे खा मुजे मुड़से ढोरन के सखर वालन जो चारो मसालो खरायो आहे, त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे, ऐ हाणे पैसा भी बीणा था अचन। ही दिस सोनियो चोणियो
7: तमा ब वनी चवा उनके त ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए।
9: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो।
5: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजों को इलाज कंदा हर जुमे छंछर और आचर से बगैर फीस के चेकअप कयो वे। थींदो। यादि रखंदा मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 03-01-2196-851।
0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
0: न अदा।
11: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
10: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
11: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
12: 03013992836
11: मोहम्मद उमेर गोरी 03-1519-15-5-724।
13: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जी साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में हाणे अव्हांखे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाईंदासीं ऐं उन्हनि दोस्तनि जा नाला बि ॿुधाईंदासीं जिन सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे ऐं जंहिं सवाल जो सही जवाबु पहिरें नंबर ते ॾिनो आहे असां उनजो नालो आख़िरि में खणंदासीं छो त हुन जो तारीफ़ बि आहे ऐं हुन जो पसंदि जो कलाम बि आहे त असांजो जेको पेट्रोल जो सरकारी अघु आहे अॼोको उहो आहे 375 रुपया 82 पैसा जी हा साईं मुंहिंजा छो त हर पंप ते पंहिंजो पंहिंजो रुपए ॿिनि जो फ़र्क़ु हूंदो आहे ऐं हर कंहिंजो अघु पंहिंजो जेके वीचारा गुगियुनि वारा आहिनि रोडनि ते दुकाननि ते गुगियूं रखियूं वेठा आहिनि उन्हनि जो त अघु ई सफ़ा निरालो आहे पर सरकारी जेको अघु आहे पेट्रोल पंपनि ते मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे जेको सरकारी गवर्नमेंट जो अघु आहे उहो आहे 375 रुपया 82 पैसा इहो असांजे सवाल जो सही जवाबु ऐं दोस्त पंहिंजे थोरो दिलि खे क़ाबू कनि छो त धचके में दिलि टुटी पवंदी आहे अहिड़ी का ख़बर हूंदी आहे पर असांजो सवाल जो जेको सही जवाबु दोस्त पहिरें नंबर ते ॿुधायो आहे असां उनजो नालो आख़िरि में खणंदासीं त असांजो सही जवाबु ॾियण वारा दोस्त आहिनि अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां साबिर खोसो सैद महला लाड़ेकाणे खां मोहम्मद शरीफ़ दरेजी बलोचिस्तान खां क़ुर्बान ख़ासकेली इनायत ख़ासकेली झंडे मरी खां इक़बाल लाचारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां मुरीद सोलंगी सखर खां ऐं महरम गोराहो नट गोराहो नौशरो फिरोज़ खां चनेसर भेण मोरे खां फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठ आगा खान जतोई खां गुलाब खान कुंभर ॻोठ कंगन खां त साईं मुंहिंजा असां हिन वक़्तु कलाम बि हलाईंदासीं दोस्त जो ऐं हुनजो तारीफ़ आहे दोस्त आहे एहसान अली बुगटी जी हा साईं मुंहिंजा तमामु बहितरीन ऐं सुठे अंदाज़ में सवाल जो सही जवाबु ॾिनो ऐं सभिनी खां पहिरियां पहिरियां दोस्त जवाबु ॾिनो दोस्त आहे एहसान अली बुगटी उन जे वालसब नालो आहे हसन अली बुगटी उन ॻोठु आहे रोहल खान बुगटी तालुको ऐं ज़िलो लाड़काणो दोस्त पापुलेशन में सरकारी मुलाज़िम आहे ऐं दोस्त इहो मुख़्तसिर तारीफ़ आहे ऐं नूर बानो जी आवाज़ में हिन जी पसंदि जो कलाम आहे दोस्त जी वॾी महिरबानी हुनखे असां मुबारकूं ॾियूं पिया ऐं ख़ुशि नसीबु थो त दोस्त आहे असांजे अॼोके प्रोग्राम रोशन सुबुह में ऐं दोस्त जे पसंदि जो कलाम नूर बानो जी आवाज़ में

0: बलोचिस्तान जे जिले मस्तुंग में सिक्योरिटी फोर्सेज जो कार्रवाईयों फितनल हिंदुस्तान जा टे दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरिए मूजिब दहशतगर्दन जे गाडियन के क्वाड पार्टर जरिए निशानो बणायो वयो। सिक्योरिटी फोर्सेज जो दहशतगर्दन जे खात्मे ताईं कार्रवाई जारी रखण जो अज़म।
1: पाकिस्तान विचो भर में छिटान घटाने लाए किरदार अदा कर रहे है। गड़ियल कौमन में पाकिस्तान की नुमाइंदी आसिम इफ्तखार है तो मके मुआदे में पाकिस्तान इजाफी जिम्मेवार जिम्मेवारियों खड़ी रो है। तस्लीम क्यों था तो सूरत हाल बेहतरी तरफ न पई अचे। ईरान अमेरिका छिटान घटाने में पाकिस्तान सभी का अग भरो है। फलस्तीन ए कश्मीर तकरार के सिक्योरिटी काउंसिल के ठहराव मूजिब हल करो है।

ईरान विच में ओमान में अॼु थींदड़ इजलास मुल्तवी। ईरान इख़्तियारनि मूजिबि इजलास तहरान ऐं मस्कत में गॾियल फ़ैसिले तहत ख़िते जे मुल्कनि जे दरख़्वास्त तहत मुल्तवी कयो वियो आहे। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त नॉर्वे वारा मुल्क ईरानी इख़्तियारनि मुलाक़ातूं करे सघनि था। इहो उन्हनि जो पंहिंजो फ़ैसिलो आहे, असांखे को एतिराज़ न आहे।

0: बापराणी वेझो जोड़े जे कत्ल खिलाफ वारसन जो लारकाने में एसएसपी चौक ते लाश रखी धरणो घोट समाई उनड़ में कत्ल थियल मुसरत ए लखमीर उनड़ जे वारसन लाश रखी हत्या जो मुजाहिरो कयो। वारसन जो चवण आहे त गुज़िरियल ॾींहं जवाबदारनि गुलज़ार हबीब राहिब ऐं अरशद ऐं ॿियनि मुसरत ऐं लखमीर उनड़ खे क़तल कयो। हिकु औरत ऐं नींगर समेत ॿिनि ॼणनि खे अगवा करे गुम कयो वियो आहे। केस दाख़िल कराइण लाइ असां बकापुर थाणे ते वियासीं पर एसएचओ इनकार करे छॾियो। पुलिस कातिलनि जे वंगारो आहे ऐं केस दाख़िल करण खां तयार नाहे। आईजी सिंध ऐं डीआईजी लाड़काणो क़तल केस दाख़िल कराए जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करायनि।
1: खैरपुर भरसां शादी तकरीब में फायरिंग निंगर मारिजी वियो। हिकु ज़ख़्मी ॻोठ सईद खान लाखो भरसां शादीअ दौरान ख़ुशीअ में फायरिंग निंगर अली ज़मान धारे जो मारिजी वियो। गोली लॻण करे ॾहनि वरनि जो साईंदा धारे जो ज़ख़्मी थी पियो। शादीअ जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील।
0: ऐं बदीन भरसां ॼातल शख़्स जो गोरीबंद लाश हथायो आहे। मीरवा भरसां बोरीअ में लाश ॾिसी इलाइक़े वासियुनि पुलिस खे इतलाउ ॾिनो। पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
1: थम थम थम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।
2: जब स्कूल जाएंगे डॉक्टर बन जाएंगे, सोचो अब्बा सबका नाम रोशन कर।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरा पर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
5: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रिया और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-310509, 03000-310509।
6: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03000-338-5569।
7: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
8: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
9: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई।
8: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
9: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
10: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।
11: आ अंगन ई तू कयो गदी की तो। السلام علیکم ادا
12: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آہیں
11: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
12: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
11: نہ ادا
8: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
11: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
12: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
11: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
8: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
12: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
13: 03013992836
14: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजों को इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कयो विंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पोंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-96-8151।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।
5: साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: अपना शहर, अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: चीन में CTD की कार्रवाई के नतीजे में शशकी दहशतगर्द मारजी वया. CTD तर्जमान मूजिब ऑपरेशन दौरान चार अहलकार भी जख्मी थिया. मारजी वियल दहशतगर्दन जो तालक पाबंदी मड़ल तंजीम सां आहे.
5: पाकिस्तान विच ओभर में चिकताण घटाइण लाइ किरदार अदा करे रहियो आहे. गडि॒यल क़ौमनि में पाकिस्तान जे नुमाइंदे आसिम इफ़्तिख़ार चयो आहे त मके मुआहिदे में पाकिस्तान वधीक ज़िमेवार तस्लीम कयूं था त सूरतहाल बहितरी तरफ़ न पई वञे. ईरान अमेरिका चिकताण घटाइण में बि पाकिस्तान सभिनी खां अॻभरो आहे.
4: आबना उर्म्स बाबति विच ओभर जे मुल्कनि ऐं ईरान जो अॼोको रिथियल इजलास मुल्तवी. ईरान इख़्तियारनि मूजिबि इजलास तहरान ऐं मस्कत जे गडि॒यल फ़ैसिले तहत खिते जे मुल्कनि जे दरख़्वास्त ते मुल्तवी कयो वियो. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त नार वारा मुल्क ईरानी इख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं करे सघनि था. असांखे को एतिराज़ न आहे.

0: बापरानी वेझो जोड़े जे कतल खिलाफ वारसन जो लाड़काने में एसएसपी चौक ते लाश रखी धरणो घोट समाय उनड़ में कतल थे मुसरत ए लखमीर उनड़ जे वारसन लाश रखी एहतजाज कयो वारसन जो चवण आहे त गुजरियल ॾींहं जवाबदारन गुलजार हबीब राहिब ऐं अरशद उनड़ ऐं ॿियनि मुसरत ऐं लखमीर उनड़ खे कतल कयो हिकु औरत ऐं नीगर समेत ॿिनि ॼणनि खे अगवा करे गुम कयो वियो आहे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे
1: खेरापुर भरसां शादीअ जी तकरीब में फायरिंग निंगर मारिजी वियो हिकु ज़ख़्मी ॻोठु सईद खान लाखो भरसां शादीअ दौरान ख़ुशीअ में फायरिंग निंगर अली ज़मान धारे जो मारिजी वियो गोली लॻण करे ॾहनि वरनि जो साईं दास धारे जो ज़ख़्मी थी पियो शादीअ जूं ख़ुशियूं मातम में तब्दील

0: بدین بھرسان جاتل شخص جو گوری بند لاش ہتھائے وائے میر واہ بھرسان بوری ماں ملے لاش اسپتال منتقل کے وائے سنجانب ٹنڈو باغو واسی حاکم شاہ جے نالے ساں کئی ویا ہے
1: ऐं मलीर जे इलाइक़े इब्राहिम हैदरीअ में बिजली बंदिश ख़िलाफ़ रहवासियुनि जी रैली ऐं धरणो सवेर रहवासी के इलेक्ट्रिक ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली कढी। कोरंगी क्रॉसिंग रोड ते धरणो हयो। सदन चवण आहे त के इलेक्ट्रिक ज़ुल्म जी इंतिहा करे छॾी आहे। बिजली न हुअण सबबि सख़्तु परेशान आहियूं। के इलेक्ट्रिक इंतिज़ाम ख़िलाफ़ बिजलीअ जे बहालीअ ताईं एहतजाज जारी रखियो वेंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 0300-310-9, 0300-501-09.
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-32-04-372 आई 0242-46-01-00।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा।
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
9: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
9: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
10: 0301-399-2836।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Sona sirf zevar nahi, har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing, 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islami gold based financing se. अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शरायत जवाबित लागू हैं.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप
3: ये निशान बनाए हुए हो कार्रवाई दौरान दहशतगर्द कमांडर नकीम समेत दहशतगर्द मारजी वया पश्चिम में सिटी डीजी कार्रवाई के नतीजे में शक्की दहशतगर्द मारजी वया सिटी डी तर्जमान मूजिब ऑपरेशन दौरान चार अहलकार भी जख्मी थे मारजी वेल दहशतगर्द जो तालक पाबंदी मड़ल तंजीम से है
4: पाकिस्तान विच ओभर में छिकताण घटाइण लाइ किरदार अदा करे रहियो आहे घरेल कौमन में पाकिस्तान जी नुमाइंदी आसिम इफ्तिखार चयो आहे त मके मुआहिदे में पाकिस्तान वधीक ज़िमेवारियूं खणी रहियो आहे तस्लीम कयूं था त सूरतहाल बहितरी तरफ़ न पई वञे ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में बि पाकिस्तान सभिनी खां अगभरो आहे
3: आबनाय हुनमस बाबत विच ओभर जे मुल्कन ऐं ईरान जो अॼोको थियल इजलास मुलतवी ईरानी इख़्तियारनि मूजिब इजलास तहरान ऐं मस्कत में गडि॒यल फ़ैसिले तहत खिते जे मुल्कनि जी दरख़्वास्त मुलतवी कयो वियो आहे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त नार वारा मुल्क ईरानी इख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं करे सघनि था असांखे को एतराज़ न आहे
4: मुबैना तौर अगवा बिन गाॾियुनि में सवार हथियारबंद बंगले ते काह करे तशदुद बाद ज़मीनदार हसन अली खे अगवा करे विया वाके जी इतलाह ते बिरादरी जा माण्हू ऐं शहरी गॾु थी विया अॻोणे सूबाई वज़ीर हसन अली खे कंहिं अगवा कयो पुलिस ॾे ख़बर
3: मेयर वेझो ज़मीनी तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल कचे तरफ़ वेंदड़ ॻोठ जाम खान भुट वासी ज़फर भुट खे पतण ते गोलियूं हणी क़तल कयो वियो वारसनि जो चवणु आहे त जहिड़े सां को बि वास्तो न आहे नौजवान खे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे ज़रिए जो चवणु आहे त ज़मीन जे मालिकीअ तां आलमाणी ऐं जतोई धुरियुनि में हलंदड़ तकरार आहे
4: कैरपुर भरसां शादी जी तकरीब में फायरिंग नींगर मारिजी वियो हिकु ज़ख़्मी घोट सईद लाखो भरसां शादी दौरान ख़ुशीअ में कयल फायरिंग नींगर अली ज़मान दारेजो खां हयाती खसे वरिती गोली लॻण करे 10 वरियनि जो साईं दा दारेजो ज़ख़्मी थियो शादी जूं ख़ुशियूं
3: बदीन भरसां अणॼातल शख़्स जो ॿोरी बंदि लाश हथ मीरवा भरसां ॿोरीअ मां मिलियल लाश इस्पताल मुंतकिल सुञाणप टंडरो बागो वासी हाकिम शाह जे नाले सां कई वई आहे
4: काज़ी अहमद वेझो मीरण रुकण शाख में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ नंढनि आबादगारनि जो एहतियाती मुज़ाहिरो आपासी अमलदारनि ते पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम आबादगारनि मूजिब मीर रुकण शाख जे पोछड़ में पाणी न पहुचण सबब फसल सुकी रहिया आहिनि पाणी विकिरो कंदड़ अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे पोछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे
3: भाकराणी वेझो जोड़े जे क़तल ख़िलाफ़ वारसनि जो लाड़काणे में SSP चौक ते लाश रखी धरणो घोट समायो हुननि में क़तल थियल मुसरत ऐं लखबीर हुननि जे वारसनि लाश रखी एहतजाज कयो वारसनि मूजिब गुलज़ार हबीब राहिब ऐं ॿियनि मुसरत ऐं लखबीर खे क़तल कयो आहे नींगर समेत ॿिनि ॼणनि खे अगवा कयो आहे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे
4: मलीर जे इलाइक़े इब्राहिम हैदरीअ में बिजली बंदिश ख़िलाफ़ रहवासियुनि जी रैली ऐं धरणो रहवासियुनि खे इलेक्ट्रिक ख़िलाफ़ रैली कढी कोरंगी क्रॉसिंग ते धरणो हयो मुज़ाहिरीन मौजूदु बिजली न हुअण सबब सख़्त परेशान आहियूं के इलेक्ट्रिक इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ बिजलीअ जी बहालीअ ताईं एहतियात जारी रहंदो
3: पने आकिल जे कचे हुसैन बेले वासी औरतुनि जो एहतजाज मुखालफ़न ते संगावती तकरार तां टिनि ॼणनि खे अगवा करे गुम करण जो इल्ज़ाम रज़ागोट थाणे जे हद हुसैन बेले वासियुनि माई ज़ोरां ईंदड़ ऐं ॿियनि एहतजाज कयो औरतुनि मूजिब कचे में संगावत तां माइटनि सां झेड़ो थियो जंहिं बाद जवाबदारनि अब्दुल समी अब्दुल फताह अब्दुल रसूल खे खंभे गुम करे छॾिया जवाबदार सैफुल्ला फैज़ मोहम्मद मलूक ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे गुम थियलनि खे बाज़ियाब करायो वञे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
6: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5451-456 तौकीर अहमद 0306-100

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
1: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03000 3385569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: क्राउन ब्रिज, पोर्सिलिन डंदर, जरकुनेन, आई मो जो एक्सीडेंट थे जी सर्जरी, आई प्लेट लगा।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजय तंदला तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। के संबंध है साधु की बारिश और आसवर खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता जमीन से आसमां तक जिंदगी से मौत तक सांस से तरदकम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथिली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब प्रोग्राम नशर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की जाएंगी। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारी स्किन के मुताबिक है, तो आप इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा बातें जान सकते हैं ताकि आप लोग आराम से तसल्ली से और दिल खोल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सके। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यस आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी समाते हैं जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है उन तमाम लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, इसका फार्मूला ऐसा रखा गया है कि हर कोई इंसान आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। ओके जी यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल जनाब सो आपके सिद्राव के साथ मौजूद है ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम करने के साथ साथ बिल्कुल जी सर आपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत के फहालतुन कैसे है आपकी हालत, उम्मीद हम शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबकुल मूड के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। बिल्कुल जी 2 घंटे हमारे पास मौजूद है और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं इन्नी शाली बातें। और इन्नी शाली बातों में जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जिक्र भी होने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि जनाब शेयरिंग इज केयरिंग होती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की समाल आने का काम करती भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों 440 उल्की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। और आगे से प्रोग्राम जो करेंगे तो जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास एक कलाम मौजूद है प्लस नाद, तो हम जरा प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ। उसके बाद जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और हसीन होते जाइए।

जी आप सुन रहे हैं वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद है, जहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि ना सिर्फ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद आप लोगों की खूबसूरती कैसे बढ़ने वाली, बल्कि ये भी बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद आपके चेहरे पर कितनी अच्छी वाली खूबसूरती आपको मिलने वाली है। तो चाहे आप मर्द जाते हैं चाहे आप खवातीन, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे होते हैं जनाब, थोड़े बहुत से आपके खर्चे भी कराते हैं। अगर आप भी जरा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं और खूबसूरती को जरा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल आप लोगों के लिए है। अच्छा, साथ साथ हम बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, और लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोग किस तरह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, यानी कि शामली प्रोग्राम कैसे होंगे वो भी बताते हैं, और साथ साथ आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है वो भी बता देते हैं। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि भाई हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी हमारी ऐसा दिल चाहता है कि भाई ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए भाई। हाँ, तो ऐसा होता है कि हर किसी की ये भी ख्वाहिश होती है तकरीबन कि भाई हमें अगर चांस मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे घूमना फिरना, किसी बाहर जाना, कौन सा मुल्क देखना, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो कि हम विजिट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि जेब जो है ना वो ज़रा इजाज़त नहीं देती। तो आज आप मुझे ज़रा ये बताएंगे कि अगर आपको फ्री में, हाँ जी फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में वो जगह घूमने का मौका मिले जो कि आपकी भाई फेवरेट डेस्टिनेशन है, फेवरेट आपकी जगह है, तो आप फिर मुझे बताएं कहाँ जाना पसंद करेंगे। भाई मुफ्त में तो चवंदा अगर धिको भी डे कोई विखायो विंदो आए तो तव्हां मूंखे ॿुधायो, अगर तव्हां जी कोई भी फेवरेट जगह आए उते तव्हांखे मुफ्त में मोकिलियो वञे त तव्हां गाॾी वञणु पसंदि कंदा, ठीकु आहे। सो बिल्कुल अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिसा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। और जी अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और अगर आप हमारा सर्च करेंगे पेज तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। बिल्कुल जी, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, इससे ये होता है कि बहुत ज्यादा वाले लोगों के पास हमारी पोस्ट जहाँ पहुंचती है ठा करके बजती है। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक किया करें और शेयर किया करें, दोस्तों को मेंशन कीजिए, उनको भी पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे चल रहे हैं मेरी जान। ओके जी, तो आज आप मुझे बताने वाले हैं अगर आपकी कोई फेवरेट जगह हो जहाँ पर आपको मुफ्त में जाने का मौका मिल जाए तो आप कहाँ पर जाएंगे। हाँ जी, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आपकी अच्छे अच्छे जवाब मुझे मिल सकते हैं। ओके, सो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ फरवा गुल मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कहती गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। हाय आपी, आप कैसी हैं? आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं। फरवा, मलिक मोहम्मद, आदिल हमारे साथ हैं, आप हमें सुन रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आपको बहुत शुक्रिया। और साजिद अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कैफ हाल में, ठीक हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं। और फहीम भाई हमारे साथ कहते हैं, विसरे सारो लोक शाल न विसरे तू, दोखे केडो मु सांढ्यो आहे साह में। अस्सलाम वालेकुम, मौला अली सलामत, अदा छा हाल आए।

0: और यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम हो गया जी। और शुएब मंकी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। और आपने प्रोग्राम की तारीफ कर दी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ है, गुड आफ्टरनून, आपको भी वेलकम कहा जाता है। हिदायतुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल है, ये गाना तो चला ओके मां ॾिसां थी सभु गाना हलाइण जी कोशिश कयूं था। अच्छा, हुन खां अलावा अख़लाक़ भाई बि प्रोग्राम में आ चुके हैं। हेलो हेलो जी, आंसर तव्हां ॾिनो आहे मदीना, ओके क्या बात है, ज़बरदस्त। सिकंदर अली हमारे साथ है, यानी कि सालार सिकंदर, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी। और किशोर भाई कहते हैं सलाम, अदा स्मार्ट आयो आ, वेलकम करे इसे स्मार्ट, वेलकम वेलकम। ओके जी, और मोहम्मद राशिद अमान भी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें जी। आप भी फौजिया सुमरों का गाना सुनना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगी सबके गाने लगाऊं। और हिदायतुल्लाह कहते हैं जवाब है, पहले तो मदीना घूमूंगा, फिर अगर पैसे बचे तो तुर्की जाऊंगा। अच्छा, वहीं भाई कहते हैं टॉपिक लंदन, ओके। और अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अदी अमां के वेलकम कयूं था, भले प्रोग्राम में। अच्छा, तुम आए हो तो लगता है जैसे बहारों का कोई मौसम आया हो, खुश आमदीद कि तुम आए महफिल में, यूं जिस तरह सुबह नौ में आमदे सहर हो। ओके जी, और रशीद खोसो भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मीरपुर खास से आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, खुश आमदीद। और साथ साथ आप बस टॉपिक को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम किस किस ने इस्तेमाल की, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी या फिर नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही। भाई मिलनी चाहिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इतने सारे फायदे हैं, तो भाई आप फायदा उठाइए ना, वैसे तो हर चीज से फायदा उठाते तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से भी फायदा उठाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई सिद्रा इतना क्यों बताते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेरी तो पर्सनली भाई फेवरेट क्रीम है, क्योंकि सबसे पहली बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है जो भाई आप लोगों की स्किन की हिफाजत भी करेगा, आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा, और आपके चेहरे के जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे भी दूर कर देगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो भाई जाइए परचेज कीजिए और माल लूट लो भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लो। और साथ साथ यहाँ पर टाइम भी हुआ जाता है कि शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने टाइम्स के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, ठीक है, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल, अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज, अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राब्ता करें, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 0300-338-5569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 0300-338-5569।

0: लेबॉरेटरियूं ऑडियो ऐं विजुअल लेक्चर सिस्टम जी सहूलियत केमेस्ट्री फिज़िक्स बायोलॉजी रियाज़ी ऐं इंग्लिश ते ख़ुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट ज़रिए मेडिकल ऐं इंजीनियरिंग में क़ाबिले तहसीन नतीजा रांदियुनि जो मैदान ऐं उते मुनक़िद थींदड़ मुक़ाबला तहरीर तक़रीर ऐं ज़हनी आज़माइश जा मुक़ाबला पंहिंजे अखियुनि जे नूर नियाणियुनि ऐं प्यारनि पुटनि जे मुनासिब तइलीम ऐं तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विज़िट करियो वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मेमण मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमण प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शरायत जवाबित लागू हैं
2: नूरे जा पीओ रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध आई वठी अच
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा
4: हा भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा
5: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8151
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
4: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5724
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेट पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। जी जनाब, तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ही बातें हो रही हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है ये जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो कुछ चीजें कुछ बातें ऐसी होती है जो वाकई भाई आपको पता होनी चाहिए। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कैसे जरूरी है बताएं तो सही, तो बिल्कुल आपको बताते हैं। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वेलकम कहते हैं। बाकी जो लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम क्यों इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रोग्राम सुनिए, आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे, आपको जो मैं नंबर बताऊंगी ना उन नंबर्स के ऊपर बस आपने राबता करना होगा और राबता करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही आसान सा काम है, बहुत ही आसान सी ये चीज लगती है मुझे। अगर कहीं पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल ना हो तो बस आप झट से नंबर घुमाएं, कॉल करें या फिर मैसेज करें और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी। ओके जी, सो डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 75-970 आई यो नंबर आहे 03-27-38-4309 बुड़ी 332 73-84-309 यो ही नंबर आहे। अगर एकड़ो नंबर बंद हो जे त बे नंबर ते तवा राबतो करे सगो था आई यो तवा जो रिस्पांस जको ना तवा जे गालन जो तवा के जरूर दई छरी दो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में तवा मालूमात वठन चाहो था त तवा ने नंबर से राबतो करे उनन का पुछी सगो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम किते किते अवेलेबल आए किथा किथा असा मनी परचेस करे सगूं था। ओगरी, सो अब बढ़ते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहली वजह तो ये है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इसे स्किन के डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते, हमारी स्किन सेंसिटिव है, ये हो गया वो हो गया, कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो अच्छे से सूट नहीं कर पाता, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरा ट्राई करके देखिए, आपको यकीन जाने बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देने वाली है। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आरबुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिला दी गई है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना, ये जनाब पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे तो सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट के अंदर पाए जाने वाले ये प्रोडक्ट होते हैं, ये चीजें होती हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं भाई आपका शुमार भी उन प्रोडक्ट में होना चाहिए जो कि भाई प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ये आपकी स्किन को इस तरह खूबसूरत बनाएंगे, जैसे कि भाई आपने नोटिस करी होगी चीज की बहुत सारी खवातीन जो कि महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं और उनका ऐसा होता है कि भाई टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो आपको अगर अपने टाइम की भी जरा ऐसा चाहते हैं कि भाई टाइम भी इतना ज्यादा हमारे पास नहीं है और पैसे भी इतनी ज्यादा हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए क्योंकि ये 2-in-1 फार्मूला है। वो कैसे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसी खूबसूरती मिलती है जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐसा नहीं कि सिर्फ खवातीन ही इस्तेमाल कर सकती हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इतना जनाब ये जदीद फार्मूला है कि आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और फाइनली आप ये महसूस करेंगे कि भाई हमारी जो केमिकल वाली प्रोडक्ट थी ना उनसे जान छूट गई है, अब हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट मौजूद है जो कि आप लोगों को मिनिमम 2 दिनों के अंदर बहुत अच्छा सा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करके देखिए, यकीन जाने आप खुश हो जाएंगे। ओके जी,
है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो डी स्किन का फेस वॉश भी मालूम कराइएगा, मिल रहा है नहीं। अगर मिल रहा है तो बढ़िया परचेज कीजिए, नहीं मिल रहा तो उसके लिए जो नंबर आपको बता रही हूँ उसके ऊपर रब्ता करते रहिए और अवेलेबल कराते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। ओके हो गया जी, बिल्कुल जी ओके हो गया। यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें भी होंगी हमारी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लगाएंगे और साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है और सवाल ये पूछा है कि भाई हमारा तो दिल करता है कि फ्री में हमें कोई इंसान पूरी दुनिया घुमाए, ऐसा न करें भी न कहूँ। सरिमा आवाज खाने कड़ो सवाल पूछो आए तो अगर तुम्हारी जगह फेवरेट जगह है जिते तुम वन चाहो था पर तुम्हारे पैसा को ना है, तुम्हारी जेब तुम्हें इजाजत कौन थी कोई तुम्हें चाहिए तो मां फ्री में तुम्हारी फेवरेट जगह से घुमाइंदम तो मुख्य बुधाए हुआ तुम्हारी फ्री जगह जगह हुआ केड़ी आए किथे तुम वन पसंद करना अगर तुम के कोई फ्री में किथे मोकले हुआ जगह जगह तुम्हारी फेवरेट आए। ओके जी, सो जेके मानो सा फेसबुक ते मौजूद आए वे पोस्ट के ज्यादा का ज्यादा लाइक एंड शेयर करना हलो आई बाकी जेके पैनल ते मैसेज कन था ठीक आ जी तुम जो मैसेज भी पढ़िया वेंदा आई फेसबुक वाला पोस्ट के लाइक एंड शेयर कन था कोने डिसी वठा थी मां पर इते एकड़ो असा जी लिस्ट में गानो आए बिल्कुल असा वो गानो बुदनासी सबका पेरी।

लाइव में क्या मसला है मुझे जरा तफसील से बताइए ताकि मुझे समझ आ जाए कि क्या मसला चल रहा है लाइव में, या फिर एक इंसान बताएगा तो मुझे ये लगेगा कि भाई सिर्फ उन्हीं की यहाँ शायद ये मसला है, कुछ और भी लोग बताएं कि लाइव सही चल रही है नहीं, ताकि हम देखें कि वाकई भाई लाइव में मसला है या बस आप ही का नेटवर्क खराब होगा।

क्या बात है, बहुत ही प्यारे से गाना एंजॉय कर रहे हैं, इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो जरा पता तो चले। अच्छा, यहाँ पर साजिद भाई लिखते हैं कि मोहम्मद ताबिश और मोहम्मद हसी भी आपका शो सुन रहे हैं जनाब, दोनों को वेलकम कहते हैं।

ओके जी फहीम भाई, आपने जो सिफारिश वाला कमेंट कर दिया है तो ये सिफारिशें इधर तो नहीं चलती। अगर हाँ ऐसी बातें आप उसकी सिफारिश करेंगे तो क्या पता आपके मैसेज गाने चलना बंद हो जाए। तो ये किसी की भी सिफारिशें ये काम मत किया करें, बीच वाला काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस प्रोग्राम में आया करें, सुकून से प्रोग्राम को एंजॉय किया करें। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या मसला है, वो उन्हें बोलें कि आप खुद ही मैनेज कर लें, ठीक है। आप उनके बीच में मत आइए वरना आगे जाकर वही लोग आपको नुकसान देंगे, फिर आप रुलते फिरेंगे और बोलेंगे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जरा लोगों के मसलों में मत पड़िए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, सुकून से प्रोग्राम में आइए, एंजॉय कीजिए और चिल मारिए जिंदगी में।

कहाँ जाना पसंद करेंगे बताएं मुझे, फ्री में अगर आपको कहीं जाने का चांस मिल जाए, भाई क्या बात है बड़ी अच्छी ऑफर है वैसे। अच्छा इकबाल आशारी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम सुन रहे हैं। सज्जाद भाई कहते हैं कि मदीना जाना पसंद करूंगा, बहुत बढ़िया जी। अच्छा अनवर भाई कहते हैं यदि सबनी से गाना हलायो सवाब खटियो, गाना हलायन तो गुनाह आए इंसान पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाता है, हम बस ये थोड़ा सा गुनाह ले लेते हैं। अच्छा अली गुलाम बिरोही भाई हमें सुन रहे कहते हैं माशूक शर को प्ले करें, भाई मत बोले ऐसी फरमाइश। अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक ऐसा मौका मिले तो जो अच्छा वैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को पता ना ही चले तो बेहतर होता है। और अगर आप भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है जी, आप जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए और डे स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा पूछिए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल करानी बाकी रहती है, क्योंकि जब आपके करीबी जनरल स्टोर पर डे स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होगी तो फिर आपके लिए मजे होंगे ना, बस जाएंगे परचेज करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो डे स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला, नो टेंशन, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए।

हकीकत है भाई। अच्छा फरवा कहती है कि आप ही अर्ज किया है, कुछ लोग दिल के इतने करीब होते हैं कि उनसे दूरी का हर लम्हा सजा लगता है। ओके अब्दुल गफार भाई हमारे साथ कहते हैं लाजवाब शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और आपके साथ मौजूद है मास्टर अब्दुल गफार, मोहम्मद बिलाल और मास्टर सईद और मास्टर वजीर अहमद चौहान, सब भाइयों को वेलकम कहते हैं। अच्छा साजिद भाई कहते हैं कि असां जॾहिं दुबई वेंदा आहियूं त तव्हां जो प्रोग्राम न हलंदो आहे छो? दुबई में बि तव्हां सॼो प्रोग्राम आराम सां फेसबुक ते ॿुधी सघो था। अगरि फेसबुक ते जीअं तव्हां हाणे मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधो पिया न, ईअं तव्हां दुनिया जे कंहिं बि कोने में मौजूदु आहियो त तव्हां मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी सघो था। अच्छा फहीम भाई, आप विजिट करने से पहले जो है ना इन नंबर्स के ऊपर जरा राबता करके उनसे मालूम आत लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर कहां पर अवेलेबल हो सकती है। अच्छा गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम एंड मौलाना इस्लाम अदर, तबीयत मेरी ठीक ठाक है और सारे लोग भी ठीक ठाक ही होंगे। आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है जनाब, आपके प्रोग्राम हम सुनते हैं रोजाना, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। एहसन अरबानी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम मौलाना इस्लाम अदर, ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, कैसी हैं आप, मैं भी जिंदा हूँ। अच्छी बात है, आए हाय जिंदा है, चलती फिरती मरे थे। और कहते हैं शो फिर से आ गया, क्या बात है, वेलकम कहते हैं आपको व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो में। और हाँ जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम कहते हैं, स्वागत हमके साथ। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कब लगा रहे हैं ये तो बताइए।

क्या बात है, इस कंप्यूटर क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताइए, जरा शेयर किया करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, इस्तेमाल कीजिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। हर कोई मतलब हर कोई, चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स फार्मूलेशन है, तो इस्तेमाल कीजिए बिना देरी और बिना सोचे।

बात है जी, ये कमाल है डे स्किन ब्यूटी क्रीम का। तो आप भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। अच्छा दर्दी दिल हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं स्वीटी। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक में स्वीडन जाना पसंद करूंगा। ओके क्यों जाएंगे वैसे वहाँ। अच्छा यहाँ पर बाहर इरफान सियाल साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद, कहते हैं ग्रेट होस्टिंग में MRJ, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, वेलकम सर। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि फेस वॉश चाहिए डी स्किन का। हाँ जी, आप कॉल करके मालूमात लीजिएगा कि डी स्किन का फेस वॉश कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ताकि आप वहाँ से जाकर आराम से परचेज कर सकें, ठीक है। अच्छा चाचा कहते हैं कि लाइफ में कोई मसला नहीं है। हाँ मुझे वही लग रहा था, वरना लाइव में मसला होता तो ऐसे लोग चुप करके बैठे होते, दंगे हो जाते यहाँ पर।

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारे से गाना एंजॉय करें और पूरे पूरे 3 बजे तक आपका हमारा साथ होगा जी प्रोग्राम के अंदर। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और ऐसे ही बातों के सिलसिले को जरा जारी और सारी रखा जाएगा। टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं। वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई जी 27 सितंबर वाले लॉन्ग मार्च खिलाफ दाखिल दरख्वास्त ते फैसलो बुधाए छड्यो। वडन वजीरन के इत्तेजाज लाए सरकारी मशीनरी जो इस्तेमाल रोकने जो हुक्म। सरकारी मुलाजमन ऑफिसरन के इत्तेजाज में शरीक न थियण जो हुक्म। अदालत चयो आए त कें सियासी जमायत या पब्लिक ऑफिस होल्डर के इस्लामाबाद जा रस्ता बंद करण जो अख्तियार न आए। कें भी सरकारी मुलाजम के इत्तेजाज में शिरकत लाए भी मजबूर न थो करे सके। हाई कोर्ट हिदायतन सा गड दरख्वास्त अप्लाई छी।
5: सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलूचिस्तान में हिंदुस्तानी फितना खिलाफ कार्रवाई जारी। नव दहशतगर्द मार वाया। सिक्योरिटी जरिए मौजूद मस्तोंग में दहशतगर्दन की गाड़ी के क्वाडकॉप्टर जरिए निशानो बनाया वो। कार्रवाई दौरान दहशतगर्द कमान नकीब समेत टे दहशतगर्द मार वाया। बशीन में भी सीटीडी की कार्रवाई के नतीजे में छह शकी दहशतगर्द मार वाया। सीटीडी तर्जमान मौजूद ऑपरेशन दौरान चार अहलकार भी जख्मी थे। मार वाया दहशतगर्दन जो तालुक पाबंदी वाली तंजीम से है।
4: लबनान के घरू वजीर जो ममलकती वजीर तलाल चौधरी से गड यादगार पाकिस्तान जो दौरो। लबनानी घरू वजीर पुलिस लाइन जो भी दौरो करे। लबनानी घरू वजीर यादगार पाकिस्तान ते गुल भी रखा। एफसी जे दस्ते लबनानी घरू वजीर अहमद जार के सलामी भी दिनी।
5: खेपरो वेझो अगोणो सूबाई वजीर ए जमींदार हसन अली के मुबैना तौर अगवा बिन गाडियुनि में सवार हथियारबंद बंगे ते काह करे तशद्दुदबाज जमींदार हसन अली के अगवा करे वया। वाके बाद शहर में शटरबंद हड़ताल। अगोणे सूबाई वजीर हसन अली चाहो के अगवा कयो वयो आहे। पुलिस बेखबर आहे।
4: मेयाड़ वेझो जमीनी तकरार तां जेड़ो नौजवान कतल। कच्चे तरफ वेंदड़ गोठ जाम खान भटवासी जफर भोट के पतन ते गोली हणी कतल कयो वयो। वारसन जो चवण आहे त जेड़े सां को बि वास्तो न आहे। नौजवान के बेगुनाह कतल कयो वयो आहे। ज़रियन जो चवण आहे त ज़मीन जे मालिके तां आलमाणीअ जतोई धुरनि में हलंदड़ तकरार आहे।
5: बदीन भरसां हथ आयल बोरी बंद लाश जी सुञाणप थी वई। मीर वाह भरसा मिलियल लाश की सुणप टंडो बागो वासी हाकिम शाह के नाले से थी है। पुलिस मौजूद मकतूल के पुठिया गोली लगल है। पोस्टमार्टम बाद काजी अहमद वेझो मीर रुकन शाख में पानी की खोट खिलाफ नंडन आबादगार एहतियाज मुजाहरो। आपाशी अमलदार से पानी विक्रो कर इल्जाम। आबादगार मौजूद मीर रुकन शाख के पोछड़ में पानी न पोछण सब फसल सुकी रहा है। पानी विक्रो कदड़ अमलदार खिलाफ कार्रवाई कर पोछड़ ती पानी पहुंचाया वे।
4: भाकरानी वेझो जोड़े के कतल खिलाफ वारसन जो लाड़काने में एसएसपी चौक से लाश रखी धरणो। घोट समाई उन में कतल थियल मुसरत ए लखमीर उन वारसन लाश रखी एहतजाज कयो। वारसन मूजिब गुलजार हबीब राय बियन मुसरत ए लखमीर के कतल कयो आए। नीगर समेत बिन जणन के अगवा कयो वयो आए। जवाबदारन के गिरफ्तार कयो वञे।
5: मलीर के इलाके इब्राहिम हैदरी में बिजली बंदिश खिलाफ रहवासन की रैली ए धरणो। रहवासन के इलेक्ट्रिक खिलाफ रैली कड़ी कोरंगी क्रॉसिंग पे धरणो हो। मुजाहरीन मौजूद बिजली न होने सबब सख्त परेशान आयु के इलेक्ट्रिक इंतजाम खिलाफ बिजली की बहाली तीन एहतजाज जारी रहे।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
6: मालवन भारन लाए खुश खबरी। 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो। जानवरन में खीर अई गोश्त बधाए अम्हा के खुशहाल बनाए। हर पंसार अई जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब है।
7: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3101 09 03000 3101 09।
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03000338569।
8: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
9: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
8: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
9: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
10: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर। असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं, जॻहि जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014514456 ऐं तौकीर अहमद 03616237।
11: अस्सलाम वालेकुम अदा।
12: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
11: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
12: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
11: न अदा।
13: यार अॼु कल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
11: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
12: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
11: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
13: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
12: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
14: 03013992836।
15: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में चर्चे हो रहे हैं जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता है और ना सिर्फ बताया जाता है बल्कि आप लोगों को उन तमाम चीजों से अवेयर भी किया जाता है जो चीजें शायद आप नहीं जानते। कई मरतबा बहुत सारी खवातीन या फिर इस तरह के लोग मुझे मिल रहे होते हैं जिनका ये होता है कि भाई मुझे समझ नहीं आती कि उनको रिलेटेड स्किन से कुछ बेसिक सी नॉलेज भी नहीं होती, यानी कि बहुत से मासूम से लोग होते हैं, अगर उनसे कुछ भी पूछा जाए या फिर उनकी स्किन को देखा जाए तो ये अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले इंसान ने अपनी स्किन के साथ कितना गलत कर लिया है, क्योंकि जो भी आपको प्रोडक्ट बताए जाते हैं तो वो आप ठा करके लगा देते हैं स्किन के ऊपर। और जब ये आदत आप लोगों की हो जाती है ना, पड़ जाती है ये आदत इंसान के अंदर कि कोई भी प्रोडक्ट बस लगाना है लगाना है लगाना है, तो ये आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि आपके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, आपके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक्नी के निशानात आ जाते हैं और आप अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इन तमाम प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा सूटेबल सा प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए जो कि सेफ भी होना चाहिए हम इस्तेमाल करें तो भाई कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैं यहाँ पर चला चला के आप लोगों को बता रही होती हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी ना। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम देखा जाए तो ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने तैयार किया है जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि जिनको स्किन की फुल नॉलेज होती है कि आपकी स्किन के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीजें आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। तो अगर आप भी अपनी स्किन से प्यार करते हैं, अपने चेहरे को खराब नहीं करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है और इसके साथ अल्फारबोटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि इससे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही आप लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि आप लोगों से ना लोग पूछेंगे भाई आप इतना महंगा महंगा फेशियल कहां से करा के आए हैं, इतनी महंगी ट्रीटमेंट आप कहां से ले रहे हैं। आप उनको बस इतना बताइएगा ये कमाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको इतने अच्छे रिजल्ट देंगे कि आप वाकई हैरान हो जाएंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप चाहे मर्द हंसाते हैं खवातीन इस्तेमाल कीजिए। वैसे भी कितना खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जिल्द की जो केयर होती है, ख्याल होता है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए और ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत भी बना देगी और बेहतरीन आपकी स्किन के लिए इंतखाबी साबित होगा। और जनाब अब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जब इस्तेमाल करते रहेंगे आप तो आपकी स्किन जो है वो नरम मुलायम हो जाएगी, हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी और आपको स्किन के अंदर एक अच्छा खासा रिजल्ट जो है ना वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अच्छी तरह जो है ना आपकी स्किन की केयर करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। तो अगर आप भी कुछ अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ प्यारी सी चीज अपनी स्किन को देना चाहते हैं, तो ये भी एक गनीमत होती है जनाब कि आपको टाइम से पता चल जाए कि भाई कुछ चीजें हमारी स्किन के लिए वाकई जरूरी होती हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए और वहां से नाम लेकर तलब कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल जाएगा, तो वो भी आप साथ में परचेज कीजिएगा। दोनों चीजें साथ में लगाइए और दोनों चीजें साथ में लगाने के बाद आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें सुन रहे हैं, किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है, किसी भी गाँव से आप हमारा शो सुन रहे हैं, ये चीज मैटर नहीं करती, बस ये चीज मैटर करती है कि वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी ट्री 12-50-970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-033-27-38-43-09 यानी बुड़ी 332

ओके जी, ब्यो नंबर आहे बुड़ी 332 है 73 84 390। ओके सो ही नंबर तव्हां डायल कयो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल करायो। एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे चर्चे जी तव्हांखे खबर पइजी वई हूंदी त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केड़ो वॾो नालो आहे। एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकिड़ी जनाब प्रीमियम क्वालिटी जी प्रोडक्ट आहे, सो तव्हांखे लाज़मी ट्राई करणु घुर्जे। वैसे ट्राई करण में छा ई वेंदो, सो तव्हां ट्राई करे ॾिसो, यकीन जाने भैया को बहुत मजे आ जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और बहुत ज्यादा जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इस चीज का अंदाजा लगा ही लेंगे। अच्छा, तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं। आप तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद है, खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो जी आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताइए, अगर आपको फ्री में कहीं पर जाने का चांस मिल जाए तो आप बताएं आप कहां जाना पसंद करेंगे। और इसी के साथ साथ यहां पर हम पैनल की जाने पाते हैं, तो आपके कुछ मैसेजेस हैं। ओगरी सो हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है पटीदन खान अब्दुल मनान, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, मुझे भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लेनी है मगर यहाँ पटीदन में नहीं मिल रही, प्लीज प्ले करना। अच्छा, तव्हां गानो लिखियो आहे और पटीदन में अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले त जेको हाणे तव्हांखे नंबर ॿुधायो न, उन नंबर मां हिकिड़े नंबर ते तव्हां राबितो करे वठो, ऐं उन्हनि भाई साहब खे चओ त भाई साहब असांजे पटीदन में बि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल करायो, छो त असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करणु चाहियूं था, ठीकु आहे। और महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, मुस्कान का मतलब मुस्कुराने वाली, हंसने वाली और रज रज के हंसने वाली, हमेशा खुश रहे, सो स्वीट। हदीका क्यानी का कोई वीआईपी डिस्को वाला गाना सुनाए। ओके जी, डन हो गया। और गुलाम नबी फ्राम दादू कहते, सिद्रा क्या हाल है आपका, शो वेरी नाइस है, प्लीज प्ले फकीर अमीर बख्श। और ओके, मां कोशिश कयां थी तव्हां भाइरनि जो जेके पसंद जा गाना आहिनि फरमाइशन उन्हनि खे हलायूं प्रोग्राम में। और पटीदन खां अब्दुल मनान, तव्हां मूंखे हिकिड़ो ई मैसेज कॉपी पेस्ट कयो आहे तकरीबन 4-5 मरतबा, सो थैंक यू सो मच तव्हांजे हिकु ई मैसेज जे लाइ, मोहबतूं आहिनि तव्हांजो, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया। और जी हमारे साथ हैं महबूब अली मोरो सिटी से, सिस्टर आपके दुआ से मदीना पाक जाने को दिल कर रहा है, बस आपकी दुआ शामिल हो। जी जी बिल्कुल, आप इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, और बहुत शुक्रिया। और गुलाम नबी फ्राम दादू, सिद्रा जी टॉपिक में जाना चाहता हूँ लंदन, लेकिन सोचता हूँ अकेले जाकर क्या करूँगा, वहाँ पे जाइएगा, घूमिएगा, इंजॉय कीजिएगा, और क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, उनका अलावा चाचा खालिद हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम बेटा सिडो, कीअं आयो, खुश आयो, सफ़ा खुश बाश, तव्हां ॿुधाए कीअं आयो चाचा। और कहते हैं अच्छा तव्हां काफ़ी, अच्छा चलो गानो लिखियो आ, सही सही सही सही सही। और ये हमारे साथी, हाय सिस्टर आप कैसी हैं, ये मोहम्मद अली जोगी फ्रॉम रूहल फकीर। ओके, ये गाना है या पता नहीं, मुझे बात समझ नहीं आई, वेल आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया के साथ। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिएगा। वोट मोहम्मद तैयब थेबू का, हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ कहते हैं आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको। जी वालेकुम अस्सलाम आपको, ये मौजूद है, हाय हेलो हेलो रेडियो जोकी, हम जापान से आपका शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस वॉइस, योर नेम प्लीज, माई नेम जी एंड योर नेम, माई नेम इज सिद्रा मुस्कान, और जे भाई आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा, ये जय भाई क्या कहते हैं, जय भाई लिखते हैं कि वेरी नाइस जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और इस अच्छा इज हाईली रिकमेंड फॉर एनी वन लुकिंग टू इनहेंस देयर सुपर ग्लो, ट्राई एंजॉय ब्यूटी, थैंक्स, ओके ऑल। जी जी सब कुछ ओके है, और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं, तभी आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के कितने सारे फायदे मिल सकते हैं। और ये हमारे साथ है जयपाल भाई, कहते हैं कि माना के हुसन के बादशाह हो तुम, मगर हम सादगी में कमाल रखते हैं, जाए बुदा कसम दे कोट नगाला जा। अच्छा चले, ये हमारे पास एक लिस्ट में जरा गाना मौजूद है, तो मैं साथ साथ जरा आप लोगों को गाना भी सुनाती रहूंगी। और जयपाल भाई कहते हैं कि बड़ी तलब थी सनम को बेनकाब देखने की, दुपट्टा जो गिरा कम वक्त जुल्फे दीवार बन गई, क्या बात है जी क्या बात है, वड्डे आए तो सी शायर।

मेरे साथ हमारे फजली हैं और फजली कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून. ओके जी, प्यारी फजली को वेलकम कहते हैं. इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, हथ मत है क्यों बाबा. अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि लाइफ तो सही है लेकिन लाइफ खराब है. लाइफ को क्या हो गया भाई, लाइफ को ठीक कीजिए. वैसे लाइफ किसी की भी ठीक नहीं होती, उसको ठीक बनाना पड़ता है. अली गुलाम बिरोही भाई हमारे साथ कहते हैं आपका शो कराची से एंजॉय कर रहा हूँ, सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच. अली गुलाम बिरोही किशोर भाई कहते मतलब अज आऊं खामोश रहा. चाहते हो ताजी नेटवर्क है. और कहते हैं कि अगर अदा अगर इंसान का मकसद जगह ते वन्ये न तो पांजे खर्चे ते वन्ये, मुझी सोच या है बाकी जी खबर कोने का. या सही गाला, वैसे मुखे भी लगंदो आ हिन जमाने में इंसान के जो भी होरो न खणे, वो चाहे एकड़े रुपए जो ही छो न हुजे. खुद कहीं अपने लिए सब कुछ, क्योंकि बाद में फिर जो सुनने को मिलता है ना वो सुना नहीं जाता, तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है. अच्छा दर्दे दिल कहती है टॉपिक में तुर्की, वैसे ये टॉपिक एक फन के हिसाब से लिया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छे से आप जो इन टॉपिक को फॉलो करते जा रहे हैं सारे लोग. और यहाँ पर आप लोगों की पसंद के गाने भी हैं जी. ये इतना छोटा सा गाना था जल्दी नहीं खत्म हो गया, चलें कोई बात नहीं, ये दूसरा गाना हमारी लिस्ट में है. और उसके अलावा

अच्छा चाचा तव्हांजो जेको टॉपिक वारो कॉमेंट हो ना वो ऊपर भरी वियो सो तव्हां उनखे अगर दोबारा कॉपी पेस्ट करे सघो था त महिरबानी कजो ठीक आहे अब्दुल जी केसर हमारे साथ मौजूद है खुश आमदीद कहते हैं और दर्दे दिल कहती है मैं और अलीजा आपका शो सुन रही है साथ में बहुत शुक्रिया स्वीटी दोनों को वेलकम कहते हैं एसन कहते हैं कि शो में रश होती है तो मैं अंदर नहीं आता बाहर बैठ के आपका शो सुनता हूँ रोज ना करें भाई एक दो कॉमेंट तो आप कर दिया करें नहीं ज्यादा नहीं

लाजमी, वरना मैं चलें चलें जी बिल्कुल वैसे भी आपका गाना लगाएंगे, आपने अच्छी फरमाइश कर दी है। मोहम्मद पनाह हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बहन, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। मोहम्मद फारूक खोसो गोठ नसर दीन खोसो कश्मोर में आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच भाईजान, आपको वेलकम हो गया। मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आबाद से, थैंक यू। रमजान भाई आ चुके हैं, रमजान भाई आपको भी वेलकम हो गया। और कहते हैं कि इंसान की खूबसूरती का ताल्लुक उसके जाहिर से नहीं बल्कि बातिन से है, हर वो शख्स खूबसूरत है जो एक खूबसूरत और बाएखलाक दिल का मालिक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे ना जो क्रीमें नहीं लगा पाते तो चलें आप डी स्किन फेस वॉश का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन का जब फेस वॉश यूज करेंगे ना तो ये भी बहुत अच्छा खासा आपके चेहरे पर जो है ना वो रिजल्ट दे जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तो बात ही कुछ और है बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो सोना सोना थी वनो, पांडी खूबसूरती जो ख्याल रखो, ये हमेशा महकंदा रहो गुलाबन जिया।

जा। ओके जी, दर्द दिल कहती है कि बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है, जैसे ही आता है फालतू के लोग चले जाते हैं। बिल्कुल, या सही गाल कही आता हूँ। टॉपिक कहती है मैं तुर्की जाऊंगी। अच्छा, अच्छी बात है, तुर्की जाए। वैसे तुर्की जाना आसान है, इतना कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता मुझे ये लगता है। और ये हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे मुस्कान, पूरी दुनिया आगे जा रही है और हम पाकिस्तानी 1980 में, मतलब आगे बढ़ना हम चाहते ही नहीं है। सही गाल, असा के वधणो ही ना है बाबा, अगते असा 1980 में वेंदासीं। लेकिन मैं एक वो वाहिद इंसान हूँ जिसने मतलब कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया। मुझे पता नहीं क्यों ये ट्रेंड्स जो है अजीब से लगते हैं। मैं बस देखती हूँ, कहती हूँ भाई इड़ा वांदा मानू भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया, इस चीज का गुरूर है। और ना कोई एक चीज बस मार्केट में आ जाए तो बस अब उसके पीछे पड़ जाते हैं, कुछ डिठो ही को ना था। चलिए, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिएगा, ठीक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर टाइम भी हुआ चाहता है जी, हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने जाए। हाँ, असा भी पांच गालन ते ब्रेक दियूं बाबा, ही तवा इते बैठा हो जो कारी न वंजो। हां, ओही वनी ओही मोटां दी। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरती हासिल कीजिए।

0: It's 2:30 PM.
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है. इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ. बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत व जवाबित लागू हैं.

हाँ जी मेरा रांझना, क्या बात है, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जनाब, और डी स्किन फेस वॉश ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं बताएं तो जरा। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, जिन लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो लोग स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आके मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं आपका कोई ऐसा फेवरेट मतलब फेवरेट आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप जाना चाहें, और अगर आपको कोई मुफ्त में वहाँ पर भेजे तो आप मुझे बताएं आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि फ्री में तो भाई बस आने चाहिए जो। ओके सो तमा टॉपिक ते गालायो न खलावा पोस्ट के तमा लाइक एंड शेयर करना वणो ठीक है। जेके जेके सोना मानो सा सगड फेसबुक ते मौजूद आयन पोस्ट के जरा लाइक एंड शेयर करना हलो। उन के अलावा मां तमा की बुधाया थी त अगर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करन चाहियो था या वरी हां मार्केट में डी स्किन फेस वॉश भी अवेलेबल थी वयो आहे त डी स्किन फेस वॉश अगर तमा इस्तेमाल करन चाहियो था त उन जे बारे में भी थोड़ी तमा के नॉलेज हुजन जरूरी आहे। सो डी स्किन फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल आहे, अगर तमा क्रीम खां थोड़ो अवॉइड करना आहे त तमा डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल करे सगो था। डी स्किन फेस वॉश जेको आहे तमाम जबरदस्त क्वालिटी जो फेस वॉश आहे बाबा, हर स्किन जे मथा सूट करण वारो प्रोडक्ट आहे, आई हर स्किन के सफाई वीआईपी बनाए छडी दो। आई तमा जी स्किन अगर एडी आ बाबा कोई भी प्रोडक्ट जल्दी सा इजीली तमा जी स्किन ते जेको मैच ना ही करी सकंदो तो तमा डी स्किन फेस वॉश ट्राई करी दिसो। आई डी स्किन फेस वॉश जेको हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल आहे, तमा जी स्किन जे अंदर ताई वेंदो, तमा जी स्किन के हाइड्रेट कंदो आहे, तमा जी स्किन के डीपली क्लीन कंदो आहे, तमा जी स्किन के मॉइस्चराइज भी रखंदो आहे। सो डी स्किन जो फेस वॉश तमा हाने किथा भी वनी बस आनी परचेज करी सको था। आई डी स्किन जो फेस वॉश न मिले तो पोई तमा के डायल करनो आहे जना अब 03। हाँ जी जनाब 03-12-50-25-907 बुरी 312 50-25 970 आई बियो नंबर आहे 033-273-8-4309 बुरी 332 73-84-309 ही नंबर साइन जेते तमा राबतो करे इजीली पांजे करीबी जनरल स्टोर्स से डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सगो था। सो डी स्किन फेस वॉश भी बाबा तमा जे खूबसूरती के चार चंड लगाए छडी दो। डी स्किन जो फेस वॉश तमा लाजमी ट्राई करी दिसो। आई तमा अगर कोई भी सुठो फेस वॉश यूज करन चाहियो था या फिर तमा के कोई भी साबुन में या फेस वॉश में तमा के खबर ना पंदी त बाबा केडी चीज असा स्किन जलाए जरूरी आहे त ता डी स्किन फेस वॉश एक मर्तबा ट्राई करी दिसो। मतलब एतरो जबरदस्त प्रोडक्ट आहे सफा तमा के चवंदम त बाबा हर एक चीज के फिटी करे ता डी स्किन जो फेस वॉश ट्राई करी दिसो, यकीन जाने आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये इतनी प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जान जाएंगे कि वाह जी वाह गाल में दम आहे। डी स्किन जो फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम बई चीजों गड लगायो, पाने खूबसूरती ख्याल रखो, तान रखना तो केर रखंदो, तो त ये तमा जी स्किन डिजर्व करे थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। नमले त नंबर ते रातो करे वटजो, आई पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वटजो।

दिलवर ही नहीं जानता। ओके जी, शमन के गाने की फरमाइश थी तो मैंने सोचा चलो शमन का गाना आप लोगों को सुना देते हैं। और स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं कि अदा स्वीडन जो काफी चीजों मुख्य वणंदियूं आहिनि सब का खास गाल होते 95% हॉस्पिटल फ्री इलाज कन था। अल्लाह वाह वाह। और कहते हैं सिस्टम अच्छा यानी कि सुठो सिस्टम आ दुनिया जो खूबसूरत तरीन कंट्री आहे सब का बेहतरीन तालीमी निज़ाम काफ़ी कुछ आहे पोत सुठी गाला वन्यो वन्यो मुखे भी वठी वन्यो गर। अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम फ्री करवाना चाहते हैं उसके लिए कैसे राबता करें आपको जो नंबर बता रही हूँ ना उनके ऊपर राबता कीजिए ठीक है। और चाचा कहते हैं कि सिंधी में हाँ चाचा सिंधी में मां नंबर बुधाण सीखी वही आयो। अच्छा शुएब मंगी कहते हैं चापे करबला जाना पसंद करेंगे क्या बात है जबरदस्त हो गया। और यासीन खंड हमारे साथ मौजूद है कहते हैं भाई को भी क्रीम फ्री अच्छा कहते हैं भाई क्रीम कोई भी फ्री नहीं करेगा हाँ जब आप दुकान खोलेंगे तो सही बात है या फ्री क्यों देंगे भला तो फ्री देनी भी नहीं चाहिए थोरो बाबा पैसो खर्च कयो पाण ते थोरो पैसो लगायो जे तव्हांखे खबर पए त खूबसूरती जेका ना हासिल करण थोरी मुश्किल त आहे पर एतरी भी मुश्किल ना जेतरो उनखे मुश्किल तव्हां बणाए छॾियो आहे। अच्छा रमजान भाई तुम हेडो वडो कमेंट करी छड़ियो आए थैंक यू वेरी मच। और मुगल उमरानी हमारे साथ मौजूद हैं आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं थैंक यू जी। और रमजान भाई तुम गाने जी फरमाइश कई सदाई दुख वारो गानो खणी दायो केड़ो दुख मिलियो भला ताके बक्तली सियाल में सुन रहे हैं भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा फहीम भाई भी हमारे साथ हैं फहीम भाई एंजॉय करें प्रोग्राम बढ़िया जी एंजॉय करें। और चाचा खालिद कहते हैं हथ मथे क्यासी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जोर डाडो आ बाबा डाडो आ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अच्छा जुल्फकार अली खोसो हमारे साथ कहते हाय सिद्रा मुस्कान जी अरे नाम बोलो अरे आपका नाम है जुल्फकार अली खोसो भाई आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया। अच्छा स्मार्ट भाई उस गाने के दो शायर थे ना वो मेरे ख्याल में वो नहीं है जिसने अभी एक होटल खोला है कौन है जागीरानी इरशाद जागीरानी बिल्कुल वही थे।

बिल्कुल जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां वठी अचो बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ा वी आई पी गोरो चिटो बणाए छॾी थी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते कोन थी मिले त बाबा नंबर छा लाइ ॿुधायां थी, नंबर ते राबितो करे वठो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए वठो, क्योंकि जनाब खूबसूरती को मज़ीद निखारने के लिए अपनी रोज़मर्रा ब्यूटी के रूटीन में आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मज़ीद खास बना देगा और आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी, आपकी जल्द जो है ना वो इतनी प्यारी हो जाएगी कि लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे और आपसे पूछेंगे भाई बताएं तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उन्हें बताइएगा जनाब ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। तो अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन को बनाएं मजीद खूबसूरत, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, अपनी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए डी स्किन फेस वॉश का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन ब्यूटी सोप हो, दोनों चीजें नहीं बल्कि फेस वॉश हो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये दोनों चीजें मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए।

अच्छा जयपाल भाई लिखते हैं कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। सलाम भाऊ। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाऊ। और कहते हैं और भाऊ ओके हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में। आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। और गांवर खान हमारे साथ है खैरापुर मीरत से, आप हमारा शो सुन रहे हैं। शायद आपका नाम में थोड़ा गलत रीड करूं तो उसके लिए माजरत करते हैं। और हमारे साथ है जी माहीन बलोच, कहती हैं अच्छा आपने ओएसटी की फरमाइश कर दी, अगर आप मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो आपको ओएसटी हम सुन लेंगे, ठीक है। और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सिडो सॉन्ग मिला आपको मेरा? आपका गाना सच्ची बताऊं तो नहीं मिला मुझे। और जयपाल भाई कहते हैं कि भाऊ आपका टॉपिक पर क्या जवाब है, जरा हम भी तो सुने। मेरा जवाब तो बिल्कुल यही होगा, अगर फ्री में क्या मतलब, मैं तो खुद ही जाऊंगी। फ्री वाला तो सीन खैर हमारी जिंदगी में नहीं है। वैसे अगर चांस मिल जाए या फिर ऐसा कोई सीन हो जाए तो सबसे पहले सऊदी अरब आ जाऊंगे, क्योंकि मेरा एक फेवरेट मतलब ये है कि मैं जाऊं वहां पर, हर एक चीज देखूं, हर सारी चीज वहां पर विजिट करूं, इतनी सारी चीजें ये वहां पर कि बस वहां जाए और खो जाए, कभी वापस ना आए, बस यो दिल चवंदो है। और कहते हैं टॉपिक भाऊ ऑस्ट्रेलिया सिडनी सिटी जाएंगे जरूर। जी जी इंशाल्लाह जाइएगा, खुशी के साथ जाइएगा। खुशी के साथ मतलब हैप्पी होके जाइएगा और हमारी भाभी खुशी के साथ जाइएगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है।

हलो या भी सही ॻाल्हि आहे, टाइम ते अगरि पंहिंजी ग़लती जो अहसासु थिए त इहा बि सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे। अच्छा फरवा कहती है आपी आज आपको सॉन्ग की तकलीफ नहीं दूंगी, बस आपका शो सुनने का दिल करता है, बस ऐसे ही रहा करें आप, आज नहीं बस कल परसों जब भी आए तो गाने की फरमाइश मेहरबानी करके थोड़ी कहूंगी या करें, मैं सबको बोलती हूँ। और किशोर भाई कहते कि तुझे शोला ही गाना सही है ना, हानी एड़ा गाना फरमाइश करना करो। और रिजवान अली कहते हैं बहन कैसी है आप, आपका शो नाइस है, जबरदस्त शो लाजवाब। अच्छा आपने लिखा है कि ईरान जाएंगे, ओके ओके बढ़िया हो गया। अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाऊ आपने फिल्टर जरूर इस्तेमाल किया होगा, बाबा हाँ फिल्टर की जरूरत ही कोन है, छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सफा वी आई पी थी आयो, सो तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाओ, तुम्हें भी फिल्टर की जरूरत कोन पवंदी। और अदो चे तो इन हिसाब का तू ढो बोरिंग मानुस आए मुख्य भी लगंदो आहे हिते मां जड़ी तांके लगा थी पर्सनल, अगर तां मुसा मिलो त मां इन का सफा मतलब चेंज आया, मां डाडो मूडी मानू आया, सो जेके भी जिंदगी में ट्रेंड आया है ने मुंह करे ट्राई को ना कया, अई जेके छोकरियों मतलब किरी पंदी जेको भी ट्रेन ना कश्मीरी चूड़ियों आयो हलबा, यो स्टैनली आयो ने जग खणी घुमदी वतन पयो हलबा, वरी यो बो वारो बुरको हले यकीन जानो एक भी चीज को न वरती, आई मुखे अलाई शोरी टेंशन थी दिया जदे सबनी मानन के ओए चीज होंदियो है, असा थोड़ा अलग नेचर जा मानु आयो, सो असा चना वो कम हरगिज न कर जेको सब कन पया, सो समझो था ऐसा डिसन घुर्जे बाबा खबर हो जे मुल्क जाने जी छापे वाले मुल्क जाने में। आई उन खाए अलावा हिदायत ला कहते वैसे सिद्रा मैंने भी एक, हाँ हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है, वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रही है। और अब्दुल गफार भाई कहते लाजवाब शो मेलसी सी आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बढ़िया। सालार सिकंदर कहते हैं सिस्टर जी हम एक सॉन्ग अच्छा गाना सुनना चाहते हैं लेकिन गाना कौन सा ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, सो थैंक यू जी थैंक यू। और जियाउल्ला खान हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम जियाउल्ला खान जी। और ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रेक है जी जो कि हम एंजॉय करें, काफी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था ये वाला गाना भी सुनेंगे, तो ये गाना है ऐसा कि इसको लास्ट में सुना जाए तो बस आप सब लोगों को डेडिकेट होगा जिनको अच्छा लगेगा। और ये क्या कहते हैं कि शाम वाले शो में चलिए जी डन हो गया ओके जी ओके, बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए ठीक है जी। तापीदार साइया जा तापीदार जी हजूरी करण वारा हर वक्त।

ओके जी, जिन लोगों ने अभी तक पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दी जरा, और आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप वहाँ से जाएं तो आपके लिए आसानी हो जाए, बस परचेज करें और इस्तेमाल करना शुरू करें, ठीक है। और मोहम्मद सलमान कहते हैं, शमन भा खर्च करता जरूर इंदो बाकी या भी गाला है। साजिद अली भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। और ये रमजान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने शायरियां भेज दी हैं सारी सारी, इतनी सारी। और ये दो कहते हैं कि हाँ ना अदा जड़े केर फ्री में घुमाण मोकले तो एड़ी कंट्री जो नालो वठे जेको सब खां महंगो हो जे। सब खां महंगो लंडन था वाला, एडो महंगो था छा बुधायो। अगर अड़ी गाल तो लंडन वनो, बाकी अगर दिल से गाल तो जाले तेज दिल से होडा हल्या वनो, खर्च जो टेंशन न वो साहब वेठो।

टाइम खत्म हो गया जी हमारे प्रोग्राम का, और ये हमारे साथ है आई एम अवेश फ्रॉम सखर से, पहली बार प्रोग्राम शामिल हो रहा हूँ आपके भाव हो सके तो मुझे अहमद मुगल का पहली मर्तबा इतनी देर से आए तो गाना तो प्ले हो ही नहीं सकता था, तो बहुत शुक्रिया आपको, दिल से वेलकम कहते हैं, आपका गाना कल या परसों लगा लेंगे, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ है। और जयपाल भाई थैंक यू इतने सारे मैसेजेस के लिए, और बाकी बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया जो जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिनके फीडबैक रह चुके उनसे माजरत कर देते हैं। अखलाक भाई लास्ट में प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया। नसरुल्ला जतोई भाई आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ है। सो वरी तव मुझे ज्वाइन करो 5 बजे वाले प्रोग्राम में, यानी पूरे 5 बजे खां 6 बजे ताई तवाजो संजो साथ हुंदो आहे प्रोग्राम में। सो पांजो हेडो सरो ख्याल रखो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जो यूज कंदा रहो बाबा, खूबसूरती दाढ़ी जरूरी आहे। सो मोकलानी ना ही सिन सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड

0: आबनाय और सबाबत विच ओभर जे मुल्कन ईरान जो अजोको रिथियल इजलास मुलतवी ओमान ईरान इजलास थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बकाई चयो आहे त सऊदी अरब जे दरख़्वास्त ते ओमान में अॼु रिथियल इजलास मुलतवी थियो आहे। सऊदी अरब जे तेल पाइपलाइन ते हमले में बि ईरान मुलविस न आहे। ईरान ऐं विच ओभर जे मुल्कनि में शिकत आणण जो फ़ाइदो रुगो इसराइल खे थियो आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह 1 अक्टूबर खां फ्लोर मिल्स खे सरकारी कणक जारी करण जी हिदायत करे छॾी। कणक ज़खीरो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त हुकूमत जी पहिरीं तरजीह शहरनि खे सस्तो अटो फराहम करणु आहे। कणक जे ज़खीरनि ऐं विरासत लाइ निगरानीअ वारो निज़ाम बरक़रार रखियो वञे, शहरनि जो ग़िज़ाई तहफ़ुज़ यकीनी बणायो वञे। गरीब ऐं पोरियत तबिके खे महांगाईअ खां बचाइण लाइ वज़ीर आज़म पेट्रोल ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कोशिश हूंदी त वध खां वध शहरनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। वफ़ाकी वज़ीर अता तरण छींदा फातिमा अली परवेज़ मलक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त पहिरें मरहले में शहरनि खे NIC नंबर मोकिले रजिस्ट्रेशन कराइणी पवंदी। ॿिए मरहले में गाॾीअ जी रजिस्ट्रेशन थींदी। टूल व्हील लाइ 20 लीटर ऐं नंढनि गाॾियुनि लाइ 30 लीटर ताईं ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान में हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं जारी। 9 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि मस्तोंग में दहशतगर्दनि गाॾीअ खे क्वाड कॉपरेटर ज़रिए निशानो बणायो। कार्रवाई दौरान दहशतगर्द कमांडर नकीब समेत 3 दहशतगर्द मारिजी विया। पछीन में CTD जी कार्रवाई जे नतीजे में 6 शकी दहशतगर्द मारिजी विया। CTD तर्जमान मूजिबि ऑपरेशन दौरान 4 अहलकार बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो तालक पाबंदी मड़ियल तंज़ीम सां आहे। लबनान जे घरू वज़ीर जो वज़ीर तलाल चौधरीअ सां गॾु यादगार पाकिस्तान जो दौरो। लबनानी घरू वज़ीर पुलिस लाइन्स जो बि दौरो कयो। लबनानी घरू वज़ीर यादगार पाकिस्तान ते गुल बि रखिया। AFC जे दस्ते लबनानी घरू वज़ीर खे सलामी बि ॾिनी। खिपरो वेझो अॻूणो सूबाई वज़ीर ऐं ज़मीनदार हसन अली चायो मुबैना तौर अॻुवा ॿिन गार्डन में सवार हथियारबंदनि बंगले ते का करे तशदुद बाद ज़मीनदार हसन अली चायो खे अॻवा करे विया। वाके बाद शहर में शटर बंदि हड़ताल अॻूणे सूबाई वज़ीर हसन अलीअ खे कंहिं अॻवा कयो आहे पुलिस बेख़बर। मेयड़ वेझो ज़मीनी तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल। कचे तरफ़ वेंदड़ ॻोठ ॼाम खान भट वासी ज़फर भट खे पतण ते गोलियूं हणी क़तल कयो वियो। वारसनि जो चवणु आहे त जहिड़े सां को बि वास्तो न आहे, नौजवान खे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। ज़रीअ जो चवणु आहे त ज़मीन जे मालिकियत तां आलमाणी ऐं जतोई धुरनि में हलंदड़ तकरार आहे। बदीन भरिसां हथ आयल ॿोरी बंद लाश जी सुञाणप थी वई। मीरवा भरिसां मिलियल लाश जी सुञाणप टंडरो बाग़ो वासी हाकिम शाह जे नाले सां थी। पुलिस मूजिबि मक़तूल खे पुठियां खां गोली लॻल आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद वधीक ख़बर पवंदी। मामले जी जांच जारी आहे। काज़ी अहमद वेझो मीर रुकण शाख में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ नंढनि आबादगारनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। आपाशी अमलदारनि ते पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। आबादगारनि मीर रुकण शाख जे पुछड़ीअ में पाणी न पहुचण सबबि फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी विकिरो कंदड़ अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे पूछड़ ताईं पाणी फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: असली चीजां चारो मसालो जी सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जी जान चारो मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारो मसालो ढोरे सेहतमंद। जी जान चारो मसालो। जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
3: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे, झुर्रियां और घी महा से फौरन कम करें। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
4: न? अदा
5: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब होयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर, अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94

0: 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: राडो रंडा कोई जना जो भी अख्तियार ना है इस्लामाबाद इंतजामिया है घरू वजारत चीफ सेक्रेटरी है जिस के हिदायतन ते अमल यकीनी बनाने की हिदायत आबना उर्स बाबत विच उभर के मुल्क ईरान जो अजो को रिथल इजलास मुलतवी ओमान ईरान इजलास मुलतवी थियण की तस्दीक कर छी ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बकाई है तो सऊदी अरब के दरख्वास्त ओमान में अज रिथल इजलास मुलतवी थो है सऊदी अरब के तेल पाइपलाइन से हमले में भी ईरान मुलविस ना ईरान विच उभर के मुल्क में शिकत आने का फायदो रुगो इसराइल के थो है यमन जंग से को भी ताल्लुक ना को कुलंग जबल में भी एटमी सरगर्मी वाली खबरों कूड़ियों वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह पेरी अक्टूबर का फ्लोर मिल्स के सरकारी कणक जारी करने की हिदायत कर छी कणक जखीरों कदड़ खिलाफ कार्रवाई तेज करने जो हुक्म वडे वजीर की सदारत हेठ सूबे में कणक बाबत इजलास सूबाई वजीर ने बेन की शिरकत सैयद मुराद अली शाह हुकूमत की पेरी तरजीह शहर के सस्तो अटो फराहम करना है कणक के जखीर ए विरासत लाए निगरानी वो निजाम बरकरार रखे वे शहर जो गिजाई तहफुज यकीनी बढ़ाया वे

0: गरीब ऐं पोरियत तबके खे महांगाई खां बचण लाइ वज़ीर आज़म पेट्रोल ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो। कोशिश हूंदी त वध खां वध शहरनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। वफ़ाकी वज़ीरनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त पहिरें मरहले में शहरनि खे NIC नंबर मोकिले रजिस्ट्रेशन करणी पवंदी। ॿिए मरहले में गाॾीअ जी रजिस्ट्रेशन थींदी। टूल वेयर लाइ 20 लीटर ऐं नंढनि गाॾियुनि लाइ 30 लीटर ताईं ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान में हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी। 9 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि मस्तुंग में दहशतगर्दनि जी गाॾीअ खे क्वाड कॉपरेटर ज़रिए निशानो बणायो वियो। कार्रवाईअ दौरान दहशतगर्द कमांडर नकीब समेत 3 दहशतगर्द मारिजी विया। पश्चिम में CTD जी कार्रवाई जे नतीजे में 6 शकी दहशतगर्द मारिजी विया। CTD तर्जुमान मूजिबि ऑपरेशन दौरान 4 अहलकार बि ज़ख़्मी थिया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो तालुक़ु पाबंदी मड़ियल तंज़ीम सां आहे। अदालती आज़ादीअ सां गॾु एहतसाब ज़रूरु आहे। सुप्रीम कोर्ट में नंबर खां पहिरें केस मुक़ररु करण वारे जवाबदार बि ख़तमु करे छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ आफरीदी तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त हर तकरार जी पुॼाणी अदालती फ़ैसिले ज़रिए थियणु ज़रूरी आहे। अदालतुनि में केसनि जी मुक़ररी जो समूरो तरीक़ेकार तब्दील करे छॾियो आहे। हाणे टेक्नोलॉजी ज़रिए केस मुक़ररु थींदा आहिनि। केसनि जी शरह बि घटी आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ ख़िलाफ़ हैदराबाद में उमेदवारनि शागिर्दनि जे एहतजाजी कैंप 53 ॾींहं में जारी। मेरिट जे बहाली लाइ भुख हड़ताल बि जारी। ACUP वफ़द जी यकजहती तौरु भुख हड़ताली कैंप ते शिरकत। खेरपुर में बि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी मेरिट जी लताड़ ख़िलाफ़ शागिर्दनि जी रैली। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खेरपुर में स्टूडेंट्स अलाउंस पारां एहतजाजी रैली कढी वई। मेरिट बहाल करण जो मुतालबो। खिपरो वेझो अॻूणो सूबाई वज़ीर ऐं ज़मीनदार हसन अली चायो मुबैना तौरु अॻुवा। शहर में शटरबंद हड़ताल। ॿिनि गाॾियुनि में सवार हथियारबंदनि बंगले ते का करे तशदुद बाद ज़मीनदार हसन अली चायो खे अॻुवा करे विया। वाके बाद शहर में शटरबंद हड़ताल। अॻूणे सूबाई वज़ीर हसन अली चायो खे कंहिं अॻुवा कयो। पुलिस बेख़बर। मेयर वेझो ज़मीनी तकरार तां जहिड़ो नौजवान क़तल। कचे तरफ़ वेंदड़ ॻोठ ॼाम खान भट वासी ज़फर भट खे पतण ते गोलियूं हणी क़तल कयो वियो। वारसनि जो चवणु आहे त जहिड़े सां को बि वास्तो न आहे। नौजवान खे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त ज़मीन जे मालिक तां आलमाणी ऐं जतोई धुरनि में तकरार हलंदड़ आहे। बदीन भरिसां हथ आयल ॿोरी बंदि लाश जी सुञाणप थी वई। मीरवा भरिसां मिलियल लाश जी सुञाणप टंडरो बाघो वासी हाकिम शाह जे नाले सां थी। पुलिस मूजिबि मक़तूल खे पुठियां गोली लॻल आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बैदि वधीक ख़बर पवंदी। मामले जी जाच जारी आहे। काज़ी अहमद वेझो मीर रुकण शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ नंढनि आबादगारनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। आबपाशी अमलदारनि ते पाणी विकिरो करण जो इल्ज़ाम। आबादगारनि मूजिबि मीर रुकण शाख जे पुछड़ में पाणी न पहुचण सबबि फसल सुकी रहिया आहिनि। पाणी विकिरो कंदड़ अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे पुछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। दादूअ में ॿ नौजवान पुलिस हथां गिरफ़्तारीअ बाद मुबैना तौरु गुम। वारसनि जो औरतनि ऐं ॿारनि समेत एहतजाज। बाईपास वटां सागर अली भंड ऐं शाह ज़मान लगारीअ खे गिरफ़्तारीअ बाद गुम कयो वियो। मुख़्तलिफ़ थाणनि ते गोलाबाज नौजवाननि जो पतो न पियो। वारसनि जो औरतनि ऐं ॿारनि समेत एहतजाज। नौजवाननि खे आज़ाद करण जो मुतालबो। मटियारी जे शहर भिटशाह में शहरी हेस्को ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज। शहरनि बुघिया महला खां रैली कढी हेस्को ऑफिस आॾो एहतजाज कयो। भिटशाह शहर जे बुघिया महले समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे बिजली चोरीअ जो इल्ज़ाम मड़े बहिराड़ी फीडर में शामिल करण ऐं कलाकनि जा कलाक बिजली बंदि रखण जो इल्ज़ाम। लोड शेडिंग फौरी तौर ते ख़तम करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03005-69।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी ख़ुशहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी वाह, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि। ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, एम ए, डी एच एम एस सिंध, आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राप स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69।

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

0: स्टेट रेडियो नेटवर्क जे तमाम
1: कोर्ट जी अदालत ऐसे छो संजर भटिया के गलत मशीर नामू पेश करण ते हथ कड़ियो खणाए लोड़े के बा देण वर के
0: सामने न वजा कहड़ा हाल
1: गलत बयान ते अदालत ऐसे छो अब्दुल बशीर तो कुरकाणी के हथ कड़ियो खणायो 200 रुपया दंड लगायो
0: अमा चाप चंगा भलाई मतारा जोड आयो असन जी दुआ है खीर में खंड हुजो मेवन में अंब हुजो कदें पवां जी मुर्क मेरी न थी। सदाई अवां जे लुड़कन जो डुकार ए मुर्कुन जो सुकार हुजे शाल अवां के कोसो वा न लगे शाल अवां डुख्यो दी न दिसो जुग जुग जियो मुर्कंदा महकंदा ए गुलन जिया टिड़ंदा रहो। मौज़े सामाईन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम स्टेशन जे भर में लगल टावर ऐं टावर तां आवाज़ पखेड़ो उडार करे उन्हें समूरन मोहबती माण्हुनि ताईं ही म्यूज़िक ही साज़ ही आवाज़ पहुचाए पियो जे शो जो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम।

सिंधड़ी जी अजो की खूबसूरत शाम अवां जे नाम कंदे अवां जे पंहिंजो मेज़बान अवां जो आरजे अवां जे पंहिंजो जी हां उहो ई साग्यो आऊं आहां यूनिस बकारी। तोसां रोअण बि ॾुखियो, तोसां खिलण बि ॾुखियो, तोॾे अचण बि ॾुखियो, तोसां मिलण बि ॾुखियो। दिल जो अहिवाल दिलबर तोखे ॿुधाइणो आहे, दिल में रखण बि ॾुखियो त तोसां सलण बि ॾुखियो। आवाज नगर जा खूबसूरत तोहफा खणी अवां जी खिदमत में हाजिर अवां जो यूनिस बकारी। यकीनन सते वगे ताईं जो साथ इंशाल्लाह निभाईंदासीं। अवां जेकॾहिं शामिल थियण चाहियो था त मैसेज मोकिले सघो था। टाइप करियो MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखजो। पंहिंजो नालो 888 यानी 8881 ते मोकिलिजो। पहिरीं कलाक में तव्हांजा मैसेज शामिल कंदासीं ऐं ॿिए कलाक में तव्हांजूं लाइव कॉल्स शामिल कंदासीं। हाणे अव्हां जी मर्ज़ी आहे, तव्हां मैसेज मोकिलण चाहियो था ऐं मौजूदगी जो अहसास ॾियारण चाहियो था त हाणे ई मोकिलियो। तेसीं ताईं हलूं था हिकड़े सदाबहार आवाज़ ॾांहुं, हिकड़े अहिड़े आवाज़ ॾांहुं जीअं आवाज़ में जेको ट्रैक ॿुधायूं पिया उहो दुआया आहे, मोहबतनि वारो आहे। अचो त गॾिजूं था।

वेलकम बैक मौजूद सामाइन, ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM मातली, GAFM मेरपुर खास, GAFM मटियारी, GAFM सकरंड, GAFM मोरो, GAFM मेहरापुर, GAFM सखर एंड GAFM लाड़काने जो गदिल आवाज। हाज़िर आहे अवांजो पंहिंजो शो जेको मां ॿुधो पिया, ऐं उन शो जो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम। मेज़बान अवांजो आरजे अवांजो पंहिंजो यूनुस बकारी अवां सां मुखातिब आहे। जेकॾहिं अवां शामिल थियण चाहियो था अॼोके शो में, त टाइप करियो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। अॼु असां ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो। ओके जनाब, नंढड़ो अजब अली असांखे ॿुधे पियो, नंढड़ो अजब अली ऐं नंढड़े अजब अली ए ख़ासकेली साहिब, तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी लख थोरा अवांजा, ऐं अवां असांखे जॉइन कयो आहे। अवांजूं मोहबतूं ऐं भलीकार चवंदासीं तव्हांखे।

नज़ीर असांखे ज्वाइन कयो आहे, तव्हांजो तमामु घणी महिरबानी। नज़र मोहम्मद जत असांखे ॿुधे पियो, उहा जी महिरबानी। नंढड़ो मोहम्मद हसन जत असांखे ॿुधे थो, उहा जूं मोहबतूं। ॻोठ मोहम्मद रहीम जत खां थैंक यू भलीकार।

चीमस समीन साथ ऐं आवाज़ जे साथ में तवां त जॾहिं टाइप कयो त एम टी आई लिखजो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो 888-881 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो, ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु हूंदो।

जी जनाब, फकीर आमिर झिंझी असांखे थरपारकर में नोहटे जी नगरी में ॿुधे पियो। ऐं फकीर आमिर झिंझी ॿुधाए थो त उते हींअर बरसाति वसे पई ऐं माहौल ॾाढो ज़बरदस्त आहे, ॾाढो ख़ुशबूदार माहौल थी वियो आहे ऐं थर खे हुई बरसाति जी ज़रूरत आहे। सो फकीर आमिर झिंझी साहब, तव्हां ॿुधो था तव्हांजा वॾा वॾा मोहबतूं। फौज़िया जो गानो गॾिजी ॿुधूं था ब्रेक खां पोइ, बाक़ी बिना ब्रेक ॻाल्हियूं कंदासीं।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: वठनी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों

0: घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहराब पर, 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013808743।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

मौसम गरम आहे ऐं किथे सफ़ा बिल्कुलु नॉर्मल ऐं सुहिणी मौसम आहे। सो दुआ आहे त मौसम भली कहिड़ी बि हुजे पर अव्हांजी दिलि जी मौसम ॾाढी शानदार हुजे। मातली खां सोनू उमेर अली माछी साहब में सही पियो अली कयो था सलाम वालेकुम सलाम मिठा माण्हू कुर्ब तव्हांजा ख़ुशि जो आबाद हुजो इहे मोहबतूं आहिनि तव्हांजूं जो तव्हां असांखे यादि कयो कुर्ब था। उहे जनाब घड़ो बग्गो खां असांखे यादि कयो ममताज़ अली ख़ासि केली ऐं रियाज़ अली ख़ासि केली उन्हनि जो तमामु घणी महिरबानी थैंक यू भलीकार चवंदासीं वॾा वॾा वांजा ख़ुशि हुजो।

जी जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे हाकिम अली खासकेली ऐं अलॻि ॾिठो खासकेली मोहरम खासकेली मुंहिंजी तमामु घणी महिरबानी भलीकार नंढड़ी ज़ोया एंड रियाज़ ऐं मौज़म अली खासकेली मुंहिंजूं तमामु घणी महिरबानी वेलकम चवंदासीं भलीकार साले ऐं शायला साॻी ॻोठ खां पर ॻोठ नामैलूम आहे यानी अवां पंहिंजो ॻोठु लिखणु विसारे छॾियो आहे अवां खे भलीकार चवंदासीं सभिनी खे सॼे ॻोठ खे भलीकार उन्हनि ॻोठनि वाहिणनि वस्तियुनि में जिते असांजो आवाज़ मुसाफ़िरी तय करे पहुचे पियो सुवारी सिंध जे मलुक मिटीअ जे हर ॻोठ में अवां जे सिहत अवां जी सलामती अवां जे सुख जूं खोड़ सारियूं दुआऊं खणी असीं हाज़िर आहियूं शो आहे सिंधड़ी जी शाम ऐं अवां जो आर जे आई यूनिस बकारी डोकिया खां सुंबर खान लाशारी ऐं गुलाम हैदर लाशारी अवां जी मोहबतूं अवां खे चवंदासीं भली कार ख़ुश जो अलीनवाज़ लाशारी ऐं गुलाम रज़ा लाशारी अवां जी बि तमामु घणियूं मोहबतूं अमीब डोकिया वाह जे बिल्कुलु वेझो वेठा आहियो डोकिया वाह असांजो ॻोठु आहे हिकिड़ो इलाइक़ो आहे जे चौ तरफ़ वॾा वॾा ॻोठ आहिनि ऐं उते डोकिया वाह हाणे ज़बरदस्त शहर थी वियो आहे जिते तव्हां असांखे ॿुधो था अवां जी मोहबतूं आहिनि सदाई सुखिया हुजनि गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी ऐं गुलाम सरवर लाशारी अवां बि असांखे ज्वाइन कयो आहे डोकिया वाह खां मोहबतूं ऐं भलीकार यासीन लाशारी गुलाम रसूल लाशारी ऐं गुलाम फरीद मोहबतूं अवां जूं भलीकार भलीकार भलीकार पेज अपडेट थी रहियो आहे जेसिताईं तव्हांजा मैसेज असां वटि ईंदा तेसिताईं पाण हलंदासीं हिकिड़ी ट्रैक न जितां ज़बरदस्त ट्रैक अवांजे लाइ गूंजे थो साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में ही ज़बरदस्त आवाज़ अचे गॾिजी ॿुधऊं ऐं आवाज़ में आहे दर्द जी ॻाल्हि दुख जी ॻाल्हि ऐं दर्दनि में बि इहो आहे त हुन में वास्ता ॾिना था वञनि ज़बरदस्त बाबा दर्द न ॾियो ऐं दर्द ॾींदड़ जेके आहिनि उन्हनि खे ई अर्ज़ु आहे गॾिजी ॿुधी था वठूं शमन वीराली जो आवाज़ शानदार ट्रैक आहे इंजॉय कजनि

वाओ जबरदस्त ट्रैक आहे अमा इनके एंजॉय कयो पे मौसम के एंजॉय कयो पे आई गरो गडा संगे कुंडरी खा चोहन कुमार कोली याद कयो डॉक्टर अनीता चौहान संगीता पारस आई पक्को मोड़का असा के सेठ लालचंद कोली भी दे पे ता लिखे तो कुंडरी में बरसात आहे वाओ जबरदस्त आहे असी अमा के बरसात यु मुबारक हो दियो दोस्तों मेहरबानो कदरदानो मौसमियत खाते एक कथी कई है जेमे मुख्तलिफ जके इलाका इन मुल्क जा उन इलाके में बरसात 13 तारीख का 15 तारीख जी अगती थे लाए दुआ है तो यह बरसात सभी सुठी साबित थिए सुठो सोण साबित थिए इन ट्रैक के बुधंदे बुधंदे कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक होंद जो वी 45 वो ब्रेक होंद उन वापस इंदी खोड़ गाल यकीन गाल बर्दाश्त कदा असं भी तदा गाल सो बाकी सवा कलाक है केर होंद यो बुधाइंदी तक ट्रैक।

0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे.
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती.
0: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Sona sirf zevar nahi, har ghar ki amanat hoti hai. Isiliye Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islami gold based financing se अमानत को अपनी जगह रहने दो. आज ही 1114752640 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत और जवाबित लागू हैं.
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है. सुनते रहो GFM 94.

इंटरनेट थ्रू लड़का ने गला और मटियारी का मेहरापुर मेहरापुर का मोरू ऐं सकरन का साहिवाल ताईं जिन जिन लाइकन ताईं असांजो आवाज़ कनायो थो वञे सॼी सिंध जे भलारी भूं ऐं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जे मिटीअ ते मोहबती माण्हुनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर सिक भरियो सलाम। जेकॾहिं अवां ॿुधो था जेको शो त शो में शामिल थियण जे लाइ बसि ही असां जेको आख़िरी ॾहनि मिंटनि जा अवां जा मैसेज शामिल कंदासीं हुन खां पोइ कॉल्स जो प्रोग्राम शुरू कंदासीं। कॉल नंबर तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। फिलहाल अवां हीअं कयो जो मैसेज टाइप करे वठो तकिड़ो तकिड़ो MTI लिखो थोरो स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। कौशर बुरडे साहब जूं सिटूं आहिनि त तोसां जीअं रूह जा राबता वधंदा विया, तोसां जीअं रूह जा राबता वधंदा विया तीअं तुंहिंजा ज़ाबता वधंदा विया, तोसां जीअं रूह जा राबता वधंदा विया तीअं तुंहिंजा ज़ाबता वधंदा विया। नाओ जिन जो ॿुधी मुंहिंजो अंदर थे सड़ियो, हा नाओ जिन जो ॿुधी मुंहिंजो अंदर थे सड़ियो, तिन सां तुंहिंजा वास्ता वधंदा विया, तिन सां तुंहिंजा वास्ता वधंदा विया। जी जनाब, साथ ऐं आवाज़ साथ हिकिड़ो ज़बरदस्त ब्रेक आहे जेकी ॿुधी था वठूं ऐं हुन ब्रेक खां पोइ वापसि अची अवां सां ॻाल्हियूं कंदासीं। ऐं फ़िलहाल ही ज़बरदस्त ट्रैक आहे ऐं बिना ब्रेक यूनिस बकारी वापसी हूंदी, तंहिं करे केॾा न वञिजो। बसि तव्हांजे लाइ ही ट्रैक सनम मारवी जो आवाज़ प्ले कयूं पिया, ॿुधी वठो भला।

जी जना वेलकम बलिकार खुशामदी जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के स्टूडियोज में अव शो बुध पिया सिंधड़ी जी शाम अवजो आरजे अवन मेजबान तासान मुखातिब है यूनिस बकारी। सो दोस्तों मेहरबानो कदरदानो साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में यकीन असांजो साथ अवां सां सते वॻे ताईं हूंदो, पर असां वटि जेॾी महिल ही मां तव्हां सां मुखातिब आहियां असांजी जंहिं स्टूडियोज़ मां मां लाइव आहियां उहो स्टूडियो आहे मातली जी एफ एम 88.4 जो। उन स्टूडियो जे ॿाहिरां शदीद बरसाति जारी थी वई आहे ऐं उन बरसाति खे महसूस कंदे यकीन मौसम खे बि इंजॉय पिया कयूं ऐं उन सां गॾु तव्हां सां मुखातिब आहियूं। सो पाण ट्रैक ॿुधी था वठूं, उन खां पोइ न्यूज़ ब्रेक हूंदो, न्यूज़ ब्रेक खां पोइ असां ईंदासीं तव्हांजो कॉल्स वठण। केॾा न वञो साथ असांजो हूंदो ज़बरदस्त जारी हो सारी, नंढड़े ब्रेक खां पोइ असां करे हूंदो अवांजो यूनिस बकारी सरमंद सिंधी साहब जी सदाउनि खे हवाउनि में गुंजाईंदे वठूं था हिकिड़ो ब्रेक।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har.
0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज. आप सुन रहे
3: सवाई गोड़ कयो ऐवान में हलिया वया मुतहदा वारा मकानी चूंडन का भी भजी वया हुआ तरमीम इन लाय कई वही तो चूंडू थियण ताई पुराना माण्हू ही निज़ाम हलाइन खालिद मकबूर सिद्दीकी मुस्तफ़ा कमाल ते भी इल्ज़ाम मड़िया हुआ अज बई वफाकी काबीना जो हिस्सो आन उन्हें जा एक बे खिलाफ़ बयान गलत आन तो उ माफ़ी घुरन

कंहिं बि सियासी जमात वटि इस्लामाबाद जा रस्ता बंदि करण जो अख़्तियार नाहे। सूबनि जा वॾा वज़ीर एहतजाजनि लाइ सरकारी मशीनरी जे इस्तेमाल न थियण खे यकीनी बणाइनि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई जी लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत चयो आहे त कंहिं बि सरकारी मुलाज़िम खे एहतजाज में शरीक थियण लाइ मजबूर न कयो वञे। सूबाई हुकूमतूं एहतजाजनि लाइ सरकारी वसीलनि जो इस्तेमाल बि थियण न ॾियनि। कंहिं सियासी जमात या अॻवान खे बि शहरनि जी चुरपुरालो रंडक विझण जो बि अख़्तियार नाहे। इस्लामाबाद इंतिज़ामिया ऐं घरू वज़ारत चीफ सेक्रेटरी ऐं आई जीस खे हिदायतुनि ते अमल खे यकीनी बणाइण जी हिदायत करे छॾी।

वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पहिरीं अक्टूबर खां फ्लोर में कणक जारी करण जी हिदायत करे छॾी। कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ बि कार्रवायूं तेज़ करण जो हुकुम। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सूबे में कणक बाबति अहम इजलास, सूबाई वज़ीरनि ऐं ॿियनि जी शिरकत। मुराद अली शाह चयो त हुकूमत जी पहिरीं तरजीह शहरनि खे सस्तो अटो फराहम करणु आहे। कणक जी ज़खीरनि ऐं विरासत लाइ निगरानी वारो निज़ाम बरक़रार रखियो वञे, शहरनि जो ग़िज़ाई तहफ़ुज़ बि यकीनी बणायो वञे। आबनाह हुरमस बाबति विच ओभर जे मुल्कनि ऐं ईरान जो अॼोको रिथियल इजलास मुल्तवी। ओमान ऐं ईरान इजलास मुल्तवी थियण जी तस्दीक। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो त सऊदी अरब जी दरख़्वास्त ते ओमान में अॼु रिथियल इजलास मुल्तवी थियो। सऊदी अरब जी तेल पाइप लाइन ते हमले में बि ईरान मुलविस नाहे। ईरान ऐं विच ओभर जे मुल्कनि में छिकताण जो फ़ाइदो रुगो इसराइल खे थियो। यमन जंग सां को बि तालुक नाहे। पोइ किलिंग जबल बेटमी सरगर्मियुनि वारियूं ख़बरूं कूड़ियूं आहिनि। ग़रीब ऐं पोर तबिके खे महांगाईअ खां बचाइण लाइ वज़ीर आज़म पेट्रोल ते सब्सिडी ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कोशिश हूंदी त वध खां वध शहरनि खे रिलीफ ॾिनूं। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़, शिज़ा फातिमा ऐं अली परवेज़ मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पहिरीं मरहले में शहरनि खे NIC नंबर मोकिले रजिस्ट्रेशन करणी पवंदी। ॿिए मरहले में गाॾीअ जी रजिस्ट्रेशन थींदी। टू व्हीलर लाइ 20 लीटर ऐं नंढनि गाॾियुनि लाइ 30 लीटर ताईं ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे।

अदालती आज़ादीअ सां गॾु एहतसाब ज़रूरी आहे। सुप्रीम कोर्ट में नंबर खां पहिरीं केस मुक़रर करण वारी सवाबदीद बि ख़तम करे छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त हर तकरार जी पुॼाणी अदालती फ़ैसिले ज़रिए थियणु ज़रूरी आहे। अदालत में केसनि जी मुक़ररी जो समूरो तरीक़ो बि तब्दील करे छॾियो आहे। हाणे टेक्नोलॉजी ज़रिए केस मुक़ररु थींदा आहिनि, केसनि जी शरह बि घटी आहे।

मीर रज़ा जे नक जी हॾी भॻल ऐं मथे ते ज़ख़्म जा निशान हुआ। मीर रज़ा जा ज़ख़्म मौत खां पहिरीं जा हुआ। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया जो अदालती कमीशन आलो बयान। डॉक्टर सुमैया मूजिब गोली लॻण सबब मीर रज़ा जूं पासराचियूं फ्रेक्चर थियूं, फिफड़नि ऐं दिल खे नुक़सान पहुतो। अदालती कमीशन में FIR जी दाख़िला ऐं केस जी जाच बाबति पुलिस आफ़ीसर्स खां बि सख़्तु पुछाणो। मीर रज़ा जे वालिद मूजिब पुलिस पहिरियां चयो त 24 कलाकनि खां अॻु केस दाख़िल न थींदो। मंझंदि जो वियासीं त SHO रेस्ट रूम में हो।

0: मलीर जी अदालत प्रोफेसर आरिफ साकी जी केस में जवाबदार कोनेन शाह के जेल मोकले छो जांच ऑफिसर के चालान जमा कराने की हिदायत। कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरिफ साकी के धमकियों देने वाली केस की बुधनी थी। पुलिस जिस्मानी रिमांड मुकम्मल थे बाद गिरफ्तार जवाबदार कोनेन शाह के अदालत में पेश कयो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अवहां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रिया और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-310-5109 03000-310-5109।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03200180003।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: जी जनाब बिस्ना जी कॉल थी केर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी केर साहब।
1: मामा नाजिम दर बार आया तो फिर जा बार इधर रखो।
0: जी छाल है खुश है ओ साईं।
1: हेलो गुफ़ार अब्दुल्ला माने रेडियो खोजन तमाम जावा बुद्धन।
0: तमाम गड़ी मेहरबानी है मोहब्बत हूँ हमारे साथ भी केर पे बुधे।
1: मैं आज ने रेंडरो।
0: जी जी
1: मजो बाबा सरसा दे डरो अब्दुल भाई दे डरो।
0: जी जी
1: जिसके दोस्तों बदी रहे हैं सतन के असलाम वालेकुम।
0: वालेकुम असलाम। वालेकुम असलाम किरोड़े कुरुप मिठा मानो खुश हो जो आबाद हो जो रिसना सी हानी कॉल ते केर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम भाई।
0: वालेकुम असलाम केर साहब हैं किथा
2: का अदा कच्ची पुल का वर्षा चंडी को करें भाई बेटा।
0: जी छाल है चंडी साहब खुश आयो ठीक आयो अलहमदुल्ला पूरी टीम बिल्कुल ठीक आए वहाँ से कर भी केर पे बुधे
2: परम सागर में नंदड़ो अंदाज ले सन बशीर चांदियो अब्दुल अफीज जो बाबर चांदियो।
0: तमाम घणी मेहरबानी मोहब्बत कॉल करण जेले साई खुश जो दिसना सी हाणी कॉल ते केर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो
3: तमाम घणी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम केर साहब है किथा का
3: अली कलोड़ो जिला नव शरफ रो साल को कन्यारो।
0: कलोड़ा साहब खुश आयो ठीक आयो
3: अलहमदुल्ला तू बुधाए।
0: अलहमदुल्ला तवा जो दुआओं तहां सा कदी भी केर भी बुधे
3: मुझो बाबा मामा दामी नु कलोड़ो अफजल कलोड़ो ने साल करो इरफान खेडे के सलाम दिया के भाईरा बेनी बुधा सब ने के सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम किरोड़े कुर्ब मिठा मानू मेहरबानी तवा जो लखत होरा
3: ठीक आए
0: मेहरबानी सही दिसना जी हाणी कल दे के। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केर साहब है किथा का छाल है जवार मोहम्मद बचल शंभाणी साहब खुश आयो
4: खुश आयो
0: अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अवां जो दुआओं हैं शुक्र अल्लाह पाक जा करम में तां ठीक आयो ना
4: शुक्र अलहमदुल्ला ठीक ठाक सर तां बुधायो खुश आयो त बि सही आहे ज़रा
0: वाह वाह लॻी पई अवां सां गॾु केर पियो ॿुधे।
4: हा इहो पंहिंजो दोस्त अलीगुल मीराणी साहब हुन खे सलाम चवां थो।
0: जी जी वालेकुम अस्सलाम किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम
0: जी केर साहब आई किथा का
5: रुस्तम अली पवार पियो ॻाल्हायां।
0: छा हाल आहे रुस्तम अली पवार साहब खुश आयो
5: शुक्र हाल आहे साईं तव्हां ॿुधायो जीअं सुभाउ ख़ुशि हो
0: अलाह पाक जा किरोड़े करम आहिनि तव्हांजी दुआऊं लॻी पियूं आहिनि अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे।
5: हा मौसम कीअं मातिलीअ में
0: वाह जी मौसम आहे बारिश बरसी रही आहे आदिल सखीराणी जूं सिटूं आहिनि गोड़ गज गोड़ करे बरसाति बरसी पवे हू वञी न सघे राति तरसी पवे।
5: वाह वाह वाह वाह प्रोग्राम ॿुधूं पिया तमामु सुठो पियो लॻे असां सां कुझु दोस्त पिया गॾु प्रोग्राम ॿुधनि
0: दोस्तनि जा नाला खणी वठो भली
5: दिलीप कुमार मेघवार चोहन कुमार कोली रामचंद कोली मोहम्मद आचार खास केली गुलाम रहीम बलोच जेके बि दोस्त ॿुधनि पिया कुर्बानी ख़ासि केलीअ खे सलाम।
0: वालेकुम असलाम। वालेकुम असलाम मोहबतूं मिठा माण्हू लख थोरा तव्हांजा
5: ख़ुशि कंदव
0: ख़ुशि हुजो ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
6: जी वालेकुम सलाम
0: केर साहब ऐं किथा का छा हाल आहे मोहम्मद आचर ख़ासि केली साहब ख़ुशि आहियो अलहमदुल्ला असांजी टीम बिल्कुलु ख़ुशबाश ऐं हशाश बशाश आहे तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
6: होस्टम अली पावारा ऐं हैदर भटिया ऐं जेके बि ॿुधंदा सॼे संगत खे अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम कुर्ब मिठा माण्हू कुर्ब तव्हांजा ओके ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम
0: साईं केर साहब ऐं किथां खां आवाज़ तव्हांजो क्लियर नथो अचे शायदि सिग्नलनि जो इशू आहे तव्हां वटि छा हाल आहे चांडिया साहब ख़ुशि आहियो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अलाह साईं जा किरोड़े करम आहिनि तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे कुर्ब साईं जुग जुग जियो साईं अखियुनि ते महिरबानी महिरबानी हुनखे थोरा ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
8: वालेकुम अस्सलाम
0: केरु साहिब केर साहब तव्हां जो नालो पहिरीं ॿुधायो जी छा हाल आहे ख़ुशि आहियो चांडिया साहिब ख़ुशि आहियो अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई अव्हां सां गॾु बि केरु थो ॿुधे जी जी
8: ज़ुल्फ़िकार चांडियो बाबर चांडियो
0: जी जी
8: यादगार खान चांडियो
0: जी जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो
9: हलो
0: जी वालेकुम अस्सलाम केरु साहिब ऐं किथां खां अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे
9: रोडनि ते रस्तनि ते हलंदे बसि कुंदरी शहर में ॿुधो तव्हांखे बरसाति में इंजॉय कंदे चोवन कुमार कोहली अचो
0: चोवन कुमार कोहली इहो ख़ैरु हुजे भली करे आया जी करे आया चोवन साईं ख़ुशि आहियो
9: ख़ैर दुआ ॿुधायो मां मातली जे आसपास जो मौसम कीअं आहे मां वटि थरजी थरपारकर हल्की फुल्की उमरपुर ज़िले में बरसाति थी वई
0: साईं बदीन में बदीन ज़िले जे तमामु इलाइक़नि में मातली समेत बरसाति पई पई महिरबानी तव्हांजो अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे
9: हा महिरबानी असांजो दोस्त हिकिड़ो तव्हांखे हिकिड़ो त सेवन में जेको रुस्तम पवर ॿुधे थो चेलार में मूंखे ॾाढो दोस्त ॾाढो यादि कंदो दिलीप मेघवान बि मिठी वारो गुलाब गुल भील ॿुधनि बि पिया तव्हांखे बरसाति जो वठी वञनि जो सभिनी खे वाधायूं पिया ॾियनि
0: महिरबानी लख थोरा कुर्ब साईं कुर्ब तव्हांजा
9: महिरबानी साईं
0: महिरबानी ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी जमशेद चांडियो साहब कहिड़ा हाल आहिनि ठीकु आहियो हा तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे महिरबानी महिरबानी सभिनी भाइरनि जूं महिरबानी ओके ॾिसंदासीं हाणे कल हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहिब ऐं किथां खां जमशेद तव्हांजी हाणे मां कॉल अटेंड कई आहे न पोइ ॿीहर कॉल न कबी आहे ॿीहर कॉल न हिकिड़ो दफ़ो कयो जी जनाब ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो ओके जनाब कॉल ड्रॉप थी वई आहे हिकिड़ो नंढो अर्ज़ु हूंदो जेकॾहिं तव्हां रेडियो ॿुधो था रेडियो सां मोहबत कयो था त फ़क़ति हिकिड़ो दफ़ो कॉल कयो ताकी ॿियनि जी ॻाल्हि बि अची वञे बेक टू बेक हिकु कॉल पया ॿी कॉल न कयो हुन सां असां सां हाणे प्रॉब्लम इहो थो अचे त असां बहितर खां बहितर नशरियात बजाए सुठी नशरियात न ॾेई सघंदा आहियूं मजबूरनि पोइ असांखे कॉल वारा सिलसिला बंदि करणा पवंदा आहिनि इन जे करे जेकॾहिं चाहियो था त एंटरटेन तव्हांखे कंदा रहूं तव्हांजो आवाज़ बि रेडियो ते अचे त फ़क़ति हिकिड़ो दफ़ो कॉल कयो ताकी असीं ॿियनि खे सभिनी खे हिसोपती में शामिल करे सघूं कॉल ते केरु ॾिसंदासीं हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केरु साहिब ऐं किथां खां अलहमदुल्ला तव्हां केरु साहिब पिया ॻाल्हायो छा हाल आहे चाचड़ साहिब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अव्हां जूं दुआऊं आहिनि तव्हां बिल्कुलु ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो मां तव्हांजो थोराए थो आहियां तव्हांजे ॿुधण अव्हां जी मोहबत आहे न तव्हांजी मोहबत आहे तव्हां प्यार सां ॿुधो था आबाद हुजो आबाद हुजो आबाद हुजो ख़ुशि हुजो अव्हां सां गॾु ॿिए कंहिं दोस्तनि जा नाला वठंदव
10: असांखे जलाल चांडियो जो सुठो कलाम ॿुधायो
0: जी जी
10: वसीर अमन चाचर मोहम्मद यासीन चाचर
0: जी जी जी जी महिरबानी महिरबानी लख थोरा साईं लख थोरा तव्हांजा ख़ुशि हुजो जी ॾिसंदासीं हाणे कल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
11: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केरु साहिब ऐं किथां खां
11: रहमान अली शंभाणी
0: रहमान अली शंभाणी साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला अलहमदुल्ला मुझी दुआ लगी पई है। रहमान अली शंबाणी साहब, मुझे ख्याल में ताजी पेरो दफो कॉल लगी है मुझे शो में।
12: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अवसा के भी केर भी बुधे।
12: हा इलाही दोस्तान को जे संगत आ बुधन था जे मामन बचल संभाणी आ। मंजूर फल पहुतो आ हुसैन भाई ख्याल आ।
0: जी जी।
12: आ सिकंदर शाह है इन खा अलावा बस जे के दो बुधन था मैं खोड़ा सारा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम मोहब्बतू मीठा मानू मोहब्बतू आ डिस्नासी कॉल ते केरा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप थी हुई है वधी कॉल वठने की कोशिश कंदा सी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी केर साहब अच्छा आवाज न पे अचे रिसनासी कॉल ते आवाज अचे तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
13: वालेकुम सलाम।
0: केर साहब है किथा का?
13: इतर जगह का बाबर चांडे साहब जो बना।
0: जी चांडे साहब खुश आयो ठीक आयो?
13: अलहमदुल्ला सही काम दा शायद जो खैरत ते सही आ।
0: अलहमदुल्ला आवा जी दुआ लगी पे ता सके भी केर पे बुदे।
13: मुंडा दोस्तन ने कुछ मुंडा भाईरन समीर चांडियो मंताज चांडियो बशीर चांडियो जुल्फकार चांडियो रबन चांडियो
0: मेहरबानी साईं मेहरबानी लख थोरा साईं खुश हो जो दिसना सी हाणी काल दे केर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी केर साहब है किथा का?
13: भाई खिटा जवल का बदरदीन चांडियो बोल रहा।
0: जी बदरदीन चांडियो साहब वेलकम था चो ता के ता सके भी केर पे बुदे।
13: भाई कुछ खास मजा दोस्त है ने
0: खास दोस्त ने नाला बुदायो
13: भाई फाइन चांडियो।
0: जी जी
13: अब्दुल्ला
0: जी
13: कमशेर
0: जी जी
13: बाबर चांडियो जुल्फिकार चांडियो जानदार खान चांडियो।
0: जी जी ताहिर मिठू जो आवाज तुझे गुंजे पो बुदी था वहां एडो ने शर्माए तू उन गाने जो उनवान है अचो तो जी बुधऊ बाकी गाल ब्रेक का अद कलाक जो साथ अजा बुध छो तो प्रोग्राम है जारी उसारी नंढे ब्रेक का वापिस यूनिस बकारी केदार

सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही

0: अॼु त ॾाढी ख़ुशि पई नज़र अची।
1: छो न ख़ुशि थियां आदी? जॾहिं खां मुंहिंजे मुड़ुस ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो खारायो आहे त खीर जी पैदावार ॿीणी थी वई आहे ऐं हाणे पैसा बि ॿीणा था अचनि। ही ॾिस सोनियूं चूड़ियूं।
0: त मां बि वञी चवां हुन खे त ढोरनि खे सखर वारनि जो चारो मसालो ई खाराए।
2: जी जान, चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुख्य मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
5: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743।
6: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।
7: लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।

हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आरई 03073592120।

0: वालेकुम असलाम वालेकुम असलाम डिसना सी हाणी कल देके रहलो अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो सरार का
0: वालेकुम असलाम केर साहब के थन का
1: बाबो जाग जा गलाई
0: जी नालो बुधायो वरी रिपीट करयो मेहरबानी ता जो ता सके भी केर भी बुधे
1: हेलो
0: अच्छा शायद कॉल ताजी सिग्नल घटे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम दा
0: जी केर साहब है किथा का केर साहब है किथा का हेलो आवाज कट जी वियो शायद नालो उधाइन का अग में आवाज कट जी वियो है इन जे करे ब्रेक वटी वटो एको जबरदस्त ट्रैक है जो को गुंजे थो हवाओं में ट्रैक का पो बिना ब्रेक का सान वरी मिलंदासी मुलाकात जारी रहंदी छो तो असन जो जो साथ अरनन मिनटन जो बाकी है सो जो तो उधाऊ दिन जबरदस्त ट्रैक के एंजॉय कजो असा गड रह जो इन दौरान जे के कॉल्स इन यू शामिल कंदासी नंबर है 0334352578 6 अच्छा दिसो केर हुंदो असा कर पर उन केर हो जणा का पेरी ही बुधो था ट्रैक

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं
3: आप सुन रहे हैं
2: जी

0: जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू है।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

0: वालेकुम असलाम मोहबतियूं मोहबतूं साईं ओके जनाब हाणे ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम छा हाल आहे फ़क़ीर आमिर जिंजी ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो
1: तक़रीबन असांजे नोट जे बर्फ़ाचरे इलाइक़नि में सदी सदी हवा जी लहर हली रही आहे ऐं बरसाति तमामु सुठी पइजी रही आहे
0: तमामु घणी महिरबानी मोहबतूं अव्हांजे लाइ दुआगू आहियूं साईं
1: साईं तमामु तव्हांजी मोहबत प्यार ऐं वरी तव्हांजी नशीरात जो प्यारो मिठड़ो आवाज़ तव्हांजो माना प्यारे में प्यारो आवाज़ ॿुधूं पिया
0: महिरबानी महिरबानी अव्हांजी मोहबत अव्हां सां गॾु केरु थो ॿुधे साईं
1: बिल्कुलु मुंहिंजा दोस्त आहिनि रामचंद कुमार मकवाणो आहे दिलीप कुमार आहे मोहम्मद सिद्दीक़ पाड़ो आहे ऐं मुंहिंजो नंढो भाइटो अली अहमद तव्हांखे ॿुधे पियो ऐं दुआ सलाम ॾिए पियो
0: किरोड़े कुर्ब सभिनी सभिनी जूं महिरबानियूं ऐं अली अहमद खे बि वालेकुम सलाम ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ओके जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में आख़िरी लमात्रा वधण खां पहिरीं हिकिड़ो मिठड़ो आवाज़ हवाउनि में गुंजे थो उन आवाज़ खे अमीब कनाए सघो था ॿुधी सघो था ही आवाज़ जलाल चांडीअ जो आहे जेको सदाबहार आवाज़ आहे जॾहिं बि गूंजंदो सॼी सिंध में मोहबतुनि जो आवाज़ जेतोणीक असांजी सॼी सिंध सॼी दुनिया सॼे पाकिस्तान में जिते जिते बि हीउ आवाज़ ॿुधो वियो या गूंजियो उते मोहबतुनि जा मींहं वठा सो अवां सभिनी खे भलीकार चवंदे हिकिड़ी कॉल अटेंड कंदासीं हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलाम केर साहब ऐं किथां खां बशीर अहमद चांडू साहब वेलकम चवंदासीं तव्हांखे भलीकार महिरबानी असां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे जी जी जी जी
1: बाबर चांडियो
0: जी
1: जेके दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी
0: खे वालेकुम असलाम ख़ुशि हुजो साईं महिरबानी ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम सर
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां जी चांडिया साहब ॿियो तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे
2: मुंहिंजा दोस्त आहिनि कुझु भाइर मंसाज चांडियो जुनूस चांडियो
0: जी जी
2: चांडियो बशीर चांडियो
0: महिरबानी महिरबानी साईं लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम था
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां
3: मिठा माण्हू कुर्बान अली ख़ासकरी थो ॻाल्हायां ॻोठ आहे गुलाम ख़ासकरी घटि उमिरि यूनस भाउ
0: जी छा हाल आहे कुर्बान ख़ासकरी साहब ख़ुशि आहियो
3: अलाह जा इहसान ॿाहिरि जी दुआऊं बरसाती रुत जो सफ़र ऐं चारि पासे गजगोर जारी बादलनि जो रवां तवां तव्हांजो आवाज़ मिठड़ो ॿुधूं था ॾाढी ख़ुशी थिए थी खेड़नि जा चंदा वारा आवाज़ त ॾाढो मासूक थी वियो आहे प्रोग्राम ॾाढो मज़ो ॾियो
0: किरोड़े कुर्ब किरोड़े कुर्ब ख़ुशि हुजो
3: ऐं प्रोग्राम तव्हांजो अहिड़ो वीआईपी लॻे पियो शाम जो पैर आहे वरी तव्हांजो आवाज़ या मुंहिंजी सम्झ आहे त को हीउ प्रोग्राम राति जो नवे ताईं हली वञो आवाज़ थी
0: न न न नवे वॻे ताईं न बसि मुंहिंजो हाणे वञण जो टाइम थी वियो आहे
3: अलाह तव्हांखे ज़िंदगी वॾी ॾे छो तव्हां वञो
0: बसि पोइ हाणे वक़्तु वक़्त खां वक़्त ताईं जीअणो आहे हलणो आहे रहणो आहे रोज़ी रोटी एसी ताईं हुई
3: बिल्कुलु
0: साईं नाला वठी वठो जल्दी जल्दी टाइम तमामु घटि आहे ठीकु आहे ठीकु आहे महिरबानी सर महिरबानी जी जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम बल्कि कॉल ड्रॉप थी वई आहे जलाल चांडियो साहब जो आवाज़ त पुॼाणी ते पहुची वियो आहे ऐं हाणे आवाज़ आहे कहिड़ी लॻे थी कस जानी मूंखे ॾस ऐं इहो आवाज़ अमीब सुञाणंदा हूंदव यकीन छाकाणि जो जग मशहूर आवाज़ आहे फ़ाइज़ा अली जो आवाज़ आख़िरी ट्रैक हूंदो जेकी शो में ऐं ॾिसंदासीं त असां गॾु कॉल ते आख़िरी लमात में केरु गॾु जी जनाब हलो अस्सलाम वालेकुम बल्कि कॉल ड्रॉप थी वई आहे शायदि सो कॉल ड्रॉप थी वई त पोइ पाण छा कंदासीं हिकिड़ो दफ़ो कॉल खे अटेंड करण जी कोशिशि कयूं था हलो अस्सलाम वालेकुम साईं केर साहब ऐं किथां खां? अयाज अली भुट्टो साहब खे भलीकार चवंदासीं लाड़काणे जे थधे ने सुठे हवाउनि मां असांखे यादि कयो। अयाज अली भुट्टो साहब, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु? अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी
3: भुट्टो,
0: जी जी
3: हफ़ीज भुट्टो,
0: जी जी
3: भुट्टो,
0: जी जी
3: दोस्त लाड़काणे में,
0: जी जी
3: अब्दुल गनी अबड़ो, हलीम अबड़ो,
0: जी जी
3: मजीद शर
0: किरोड़े कुर्ब साईं, सभिनी दोस्तनि जूं महिरबानी, अवां जूं स्पेशल महिरबानी। थैंक यू थैंक यू। हाणे असां कॉल थी केरु? हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो वालेकुम अस्सलाम, केरु साहब ऐं किथां खां?
4: अजमेर दरगोर जाम सामान ईंदड़ खां।
0: जी जी शुक्र अलहमदुल्ला, अवां जी दुआ लॻी पए। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? जी जी जी वालेकुम अस्सलाम, ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, केरु साहब ऐं किथां खां?
5: आख़िरी लमात में इरफान अली थेबो गुलाबी संगत ख़बर बि तालका साले पट खां।
0: जी इरफान अली थेबो साहब, लख थोरा तव्हांजा देर सां पर ख़ैर सां तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
5: सलाम सिस्टर मिसिस अली, ऐं हुन खां पोइ राहत सुमरो, मंताज सुमरो, हाफिज़ गुलाम अहमद सांबल, हुसैन वकीर, भसन शंबानी, नज़ीर मंगीर, लुकमान चाचा, अब्दुल्ला बंगवार, जेके दोस्त ॿुधनि था, सभिनी खे इरफान अली थेबो बारां खां सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, किरोड़े कुर्ब ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम साईं।
0: साईं केरु साहब ऐं किथां खां?
6: साईं मिठा माण्हू रांझन कोरी, मीरपुर खां कोरी ॻोठ खां।
0: छा हाल आहे रांझन साईं, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
6: अलाह पाक जो शुक्र आहे साईं, तव्हां ॿुधायो।
0: महिरबानी अलहमदुल्ला, अवां जी दुआ लॻी पई आहे। तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे?
6: मूं सां गॾु ॿुधे पियो डॉक्टर फरहान, डॉक्टर लालचंद,
0: जी जी,
6: ऐं हिकिड़ो फराज, ऐं ॿियो मुंहिंजो भेण आयो लाल मोहम्मद कोरी,
0: जी जी,
6: ऐं न्याज न्याज जूणे जो, अली जूणे जो, इमाम बख्श जूणे जो, जानी जूणे जो।
0: जी जी महिरबानी सर, महिरबानी, लख थोरा। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कॉल ड्रॉप थी वई आहे, ऐं असां हुन खां अॻे जो इशारो अचे यूनुस बकारी हलियो वञे साज़ ऐं आवाज़ ऐं साथ जी अॼोकी पुॼाणी थिए थी। हयाती रही मेलो मचंदो वरी बि उहा सां मुलाक़ात थींदी। सो मौज़िज़ सामईन, यकीनन प्यार ऐं पंहिंजाइप जे रंगनि खे ख़ूबसूरत हवाउनि में विखेरींदे अव्हां जो यूनुस बकारी वञण चाहे थो। जब भी चाहो मुझे बुला लो, मैं गया हुआ वक़्त नहीं के फिर लौट के ना आऊं। ऐं वरी कंहिं उर्दू जे शाइर हीअं चयो, खुदा के वास्ते अब बेरुखी से काम न ले, तड़प के फिर कोई तेरे दामन को थाम न ले, जमाने भर में है चर्चे मेरे तबाही के, मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई तेरा नाम न ले। वरी सिंधी में शायर चयो, इए नाहे तो तो सवाए जी न सकबो, पर इए आहे जी तो साती के बेसा रही न सकबो। चङो यारो यारी मोकिलाए थो यूनुस बकारी इन दुआ सां, त जिते बि अव्हां जो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैरी ख़ैर हुजे। उस्तादनि, वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमन जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं अव्हां जो मुक़दर बणजनि। साथ सलामत, सिक सलामत, अलाह निके पान।

0: It's 7 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Special committee, may please present the report.
4: Sir, I rise to present the report, special committee on local government bill number 32 of 2026. The same local government amended bill 2026. तो इन्होंने सपोर्ट किया है बिल को, एक्सेप्ट फ्यू इश्यू, और टोटली बिल को इन्होंने सपोर्ट किया है. अब ये बहाना बनाकर इस पर बिजनेस को ओवर रूल करवा रहे हैं. द सेम लोकल गवर्नमेंट अमेंडेड बिल 2000 और टोटली बिल को इन्होंने सपोर्ट किया है. अब ये बहाना बनाकर इस पर बिजनेस को ओवर रूल करवा रहे हैं. द सेम लोकल गवर्नमेंट अमेंडेड बिल 2026 may be taken into consideration by the assembly at once.
5: Local government amendment bill 2026 may be taken into consideration by the assembly at once. Now I put the motion to the house. Those who are in the favor may say aye, and those who are against it may say no. I leave it, and the motion is carried.
6: काउंसिल जो मुद्दो खत्म थियण ते मेयर ऐं चेयरमैन ई एडमिनिस्ट्रेटर जा अख़्तियार संभालींदा. डेप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन खे काउंसिल जो कन्वीनर मुक़ररु कयो वेंदो. यूसी चेयरमैन गैर क़ानूनी अदावतुनि जी निशानदेही करे एस बी सी ए खे एतिरा ॾियण जा पाबंद हूंदा. सिंध असेंबली अपोज़ीशन जे गोड़ दौरान मकानी कानून में तरमीम लाइ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2026 अक्सरियत ते राय सां मंज़ूर करे वरितो. बिल में सुलह वारे फोरम जो इज़ाफ़ो, 90 ॾींहनि अंदरि फोरम क़ाइमु करणु लाज़मी हूंदो. सुलह वारो फोरम अवामी मसलनि जे हल लाइ पुलिस सां राब्तो करे सघंदो. मकानी इदारा इलेक्शन कमीशन खे मुदो मुकमल थियण खां 120 ॾींहं अॻु चूंडू कराइण लाइ ख़त लिखंदा. बिल जी मंज़ूरी दौरान मुख़ालिफ़ धुर पार्टियुनि जो सख़्त एहतजाज. स्पीकर जे डाइस अॻियां नारेबाज़ी बाद एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं. ऐवान मां बि वॉकआउट.

0: मुखालिफ दुर मकानी कानून में तरमीम पर बिल के रद्द कर छो अदालत वन ऐलान। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी है तो सियासी आमरीत हली रही है। असेंबली सेशन में बिजनेस के एक तरफ कर एक तरफो बिल मंजूर किया वो। सिंध हुकूमत यो बिल मंजूर कर अदालती फैसले की भी तोहिन कई। जमात इस्लामी के मेंबर मोहम्मद फारूक जो चवण हो तो यो बिल जमहूरियत दुश्मन है जैं खिलाफ अदालत से राबतो कयो वेंदो। लोकल बॉडी एक्ट में अख्तियारी नाहन इन तरमीम जरिए सियासी चूंडियल मानू चूंड न थियण की सूरत में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बनजी वेंदा। पीटीआई मेंबर शबीर कुरैशी 2023 में हॉर्स ट्रेडिंग जरिए मुर्तजा वहाब के मड़ियो वो हो। वरी उ मानू हुंदा तो मकानी चूंडन में दांधलीय जो खदशो यकीन में तब्दील थी वेंदो। हू इन बिल के मुकम्मल तौर रद्द कन था। सिंध हुकूमत ऐवान में एमक्यूएम के रवैये के गैर जमहूरी करार दे छो। सीनियर सूबे वजीर शर्जील मेमन है तो हर निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश होंगी है। एमक्यूएम अज भी पैं पुरानी रवायत बरकरार रखी कें जान हुई तो अवाम में उन्होंने मकबूलियत ना है तें करे मकानी चूंडन का भजी वह हुआ। पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट जो निज़ाम सिंध का सवाल किथे भी ना है। इलेक्शन कमीशन केतरा भेरा चूंडन ला लिख पर पंजाब हुकूमत हुक्म हवा में उड़ाए छाया। सूबे गरु वजीर दयाल अंजार जो चवण हो तो एमक्यूएम जो असेंबली में रवैयो गैर जमहूरी हो। बिल से एतराज हो तो स्टैंडिंग कमेटी में मामलो उथारी हा। सिंध हुकूमत चाहे थी तो बल्दियाती निज़ाम जो तसलसल बरकरार रहे चूंडू वक्त सिर थियन।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 9196 851

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पार्टनर।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हुकूमतूं इत्तेजाजनि लाइ सरकारी वसीलनि जो इस्तेमाल थियण न ॾिन। कंहिं सियासी जमात या अॻवान खे बि शहरनि जी चुरपुरारो रंडक विझण जो अख़्तियार न आहे। इस्लामाबाद इंतिज़ामिया ऐं घरू वज़ारत चीफ सेक्रेटरी आई जी खे हिदायतुनि ते अमल खे यकीनी बणाइण जी हिदायत करे छॾी। इस्लामाबाद जी दहशतगर्दी ट्रोल अदालत खैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी समेत पीटीआई जे 24 पार्लियामेंटरीनि सिया पासपोर्ट ब्लॉक करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। असद कैसर, शहराम तुर्कई, शाह अहद, शेर अली अरबाब, मोहम्मद इकबाल आफरीदी ऐं डॉक्टर अमजद अली जा बि पासपोर्ट ब्लॉक करण जो हुकुम। एफआईए खे जुनेद अकबर, शाहिद खटक, ज़ुबेर वज़ीर, उमर अयूब, अरशद उमरज़ई ऐं ॿियनि जा पासपोर्ट ब्लॉक करण जो हुकुम बि ॾिनो वियो। अदालती फैसले में चयो वियो आहे त जवाबदारनि ते रियासती इदारनि ते हमलनि ऐं दहशतगर्दीअ खे हथी ॾियण जहिड़ा संगीन इल्ज़ाम आहिनि। जवाबदार कानूनी कार्रवाई खां बचण लाइ मुल्क मां फरार थी सघनि था, तंहिं करे संदनि पासपोर्ट ब्लॉक कया वञनि।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूँ आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 94 मेहराबपुर। मिल्क राइस ब्यूटी शो और जी एफ एम 94 के सुनने वाले तमाम सभी मौजूद लिसनर्स को वेलकम बलिकार खुशामदी जी एन वशाद के और पखर राग ले।

उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से ठीक ठाक होंगे और हम दुआगो हैं कि अल्लाह करे आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे और सुनते रहें GFM 94 मेहराबपुर। जी बिल्कुल, सॉन्ग भी होंगे, मस्ती भी होगी, म्यूजिक भी होगा और जो है कि आपसे गपशप भी होगी, लाइव कॉलिंग नंबर भी बताएंगे और मिल्क राइस प्रोडक्ट के बारे में आज आपसे फीडबैक भरपूर चाहेंगे हम आपसे। जो दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कॉलिंग का वेट रहेगा और जिन्होंने अब तक नहीं परचेज की, होप कि वो आज जो है कि मिल्क राइस की या कल सुबह में लाजमन जो है कि प्रोडक्ट परचेज करेंगे। इतनी कोई कॉस्टली और महंगी चीज़ भी नहीं है और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है वाइट होने का, गोरे होने का और उसके साथ एक्नी यानी कि कील, मुहासे, दाने, दाग, धब्बे, छाइयां। दाने छोड़ भी जाते हैं लेकिन दाग रहते हैं, तो इसलिए उसके लिए एक्नी क्रीम जो है कि मिल्क राइस की वो लाजमी इस्तेमाल करें। मिल्क राइस की दूसरी प्रोडक्ट में शामिल है मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सॉफ्ट, मिल्क राइस एक्नी क्रीम और विटामिन सी आल्सो है। खूबसूरती जो नजर आए, भरोसा जो दिल जीत ले। हम एक और बोल बोलते हैं कि हम दावा नहीं दलील देते हैं, आप हमें मौका देंगे परचेज करके हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और परचेज करने के लिए आपको जो है कि आपके अपने शहर मेहराबपुर के तमाम बड़े ज़बरदस्त जनरल स्टोर से हमारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी बआसानी से, जिनमें शामिल है खुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर, फैजान जनरल स्टोर मेहराबपुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मेहराबपुर, हफीज जनरल स्टोर मेहराबपुर, कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर, जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर और अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर। जी दोस्तों, बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं है, मैंने जो है कि बात कर ली है मलिक जफर इकबाल साहब से और एम सिद्दीक साहब से। आपके इनामात की लिस्ट बन रही है जिन दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया था, जो हमने इनाम के तौर पे जब सवाल रखा था। आज विदाउट एनी इनाम भी कोई सवाल जवाब के लिए कंट्रीब्यूट भरपूर होना चाहिए। आज जो है कि हम इतने सिंधी में टोन कंदा से छाकण तसा गाल बोल कर रहा हूँ, सिंधी में चवणी है पहाका मु पहरियों भी जो है प्रोग्राम में इन के हवाले से जिक्र किया है, तो चवणियों पहाका अगे असाजे वडड़ा ओताकन में जो गुजरतूँ चवणियों पहाका उहे चवंदा हुया ऐं नंढड़ा अची करे वेहंदा हुया, उहे नसल दर नसल असांजूं सकाफ़तूं मुंतकिल थींदियूं हुयूं ॿियनि ताईं पहुचंदियूं। सो अॼु जेको आहे त मोबाइल फ़ोन जो डिजिटल जदीद दौरु आहे, लेकिन जदीद दौर में असीं वरी पंहिंजी सकाफ़त खे छॾे करे असां मॉडर्नाइज़ थियण जे चकर में असां वरी उनखे जेको आहे फैशन सम्झूं था। फैशन इन खे न चइबो आहे, पंहिंजी सकाफ़त खे विसारणु इहा ॾोह बि आहे। जी दोस्तो, वधंदासीं असीं हिकु ख़ूबसूरत ट्रैक ना, पर ट्रैक खां अॻु में असां अव्हां खे पंहिंजो लाइव कॉलिंग नंबर ऐं हेल्पलाइन नंबर पिणु ॿुधाईंदासीं, त मिल्क राइस ब्यूटी जूं प्रोडक्ट्स, तमामु प्रोडक्ट्स जेके बि आहिनि, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप ऐं उन खां अलावा मिल्क राइस एक्नी, इहे तमामु तर असांजे मेहराबपुर जे तमामु नंढनि वॾनि बल्कि सभिनी वॾनि, छाकाणि त को बि जनरल स्टोर हिन मां जा नंढो न आहे जिते प्रोडक्ट अवेलेबल आहे, उहे तमामु बहितरीन ऐं ज़बरदस्त उहे जनरल स्टोर्स आहिनि, उन्हनि ते पहुची करे अच्छा अॼु जेका आहे त इहा ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेको परचेस करणु वेंदो उहो मुंहिंजो नालो बि उते शामिलु कंदो, उते मुंहिंजो बि तारीफ़ कराईंदो त आर जे आबिद चौहान जेको आहे असांखे रिकमेंड कयो आहे यार इहा शइ असांखे ॾियो। पोइ जीअं जनरल स्टोर वारे जी बि मूंखे कॉल अचे त बाबा आबिद चौहान जेको आहे त प्रोडक्ट खे रिकमेंड करे रहियो आहे ऐं उहा प्रोडक्ट डेफिनेटली भली हूंदी जंहिंखे असीं रिकमेंड करे रहिया आहियूं। आबिद चौहान खां बि वॾो नाओ FM GFM नेटवर्क जो आहे, जेको रिस्पॉन्सिबिलिटी सां हिकिड़ी प्रोडक्ट खे प्रोमोट करे रहियो आहे, त उन प्रोडक्ट जो बिल्कुलु जेको आहे रिज़ल्ट आहे। त दोस्तो, एतिरी प्रोडक्ट महांगी बि नाहे, असीं बाज़ारि में खोड़ सारियूं मयारी या ग़ैर मयारी शयूं असां पिणु वापराईंदा रहंदा आहियूं, पर ही प्रोडक्ट जेका आहे त उहा टिनि ॾींहंनि जी दावा थी करे, घणनि जी, टिनि जी, उहो त असांखे अवां कॉल ज़रिए ॿुधाईंदो त असांजी जेका दावा आहे उन दावा खे दलील ॾियण जो जेको आहे त मौक़ो ॾिबो आहे, ऐं मौक़ो इहो ई आहे त असांजी अवां प्रोडक्ट परचेस करे टे ॾींहं इस्तेमालु कंदो, टे ॾींहं खां प्लस बि कंदो, रेगुलर बेसिस ते तव्हां में निखार, तब्दीली, बदिलाउ ईंदो वेंदो। सो उन बदिलाउ में जेकॾहिं अचे थो पियो त पोइ असांजी प्रोडक्ट अञा मज़ीद ॿियनि खे अवां रिकमेंड कंदो ऐं सभिनी खे रिकमेंड कंदो, उन खां पोइ असांखे फीडबैक मिलंदो। सो इहा शइ अव्हां खे, इहा प्रोडक्ट अव्हां खे किथे मिलंदी, केतिरा भेरा अव्हां खे असां पंहिंजा जनरल स्टोर्स ॿुधाया आहिनि, अॼु कॉल करे मूंखे कुझु जनरल स्टोर जा नाम पिणु ॿुधाईंदो। अॼु जनरल टॉपिक्स ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदा रहंदासीं, ख़ुशी
जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मोगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर, अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर पिण दस्तियाब है।

0: जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी शो। जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94 मेहराबपुर। तो अब बारी है जो है कि एक म्यूजिकल ट्रैक की, और म्यूजिकल ट्रैक जो है कि वो बहुत प्यारा सा कसीदा है और एक प्यारे बंदे की नजर करना चाहता हूँ। स्पेशली डेडिकेट करता हूँ मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट के ऑनर भी हैं और खुशी जनरल स्टोर के ऑनर भी हैं, मलिक जफर इकबाल, एम सिद्दीक साहब और तमाम तर उन जनरल स्टोर्स के नाम जो कि हमारी प्रोडक्ट जिनके पास अवेलेबल है, जिनमें से अगेन मैं नाम लेता चलूं, खुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर और अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर। तो मिलकर एंजॉय करते हैं। तो फैल संजरानी की प्यारी सी आवाज में प्यारा सा कसीदा सोना लगता है अली वाला।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महासे और रंग कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रंग

हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03003105109।

वेलकम बैक मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं जीए एफएम 94 मेहरापुर। जी दोस्तों, जो दोस्त प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03009319667 और आज बात करेंगे जनरल टॉपिक्स पे, जिनमें से स्पेशली हम अपनी सिंध की रिवायात सकाफत पे बात करेंगे, जिसमें शामिल है हमारे बड़े बूढ़ों की बुजुर्गों की कचहरियां, महफिलें, गुजारत, पिरोलियों, चमड़ियों, पहाका। जो दोस्त भी प्रोग्राम में शामिल थी दो कॉल कर दो वो असा के हिकड़ी पिरोली गुजारत चमणी या पहाको लाजमी बुधाई दो जैसे गुजारत दी तो बेन के दई कर भरण की कोशिश कंदे पर बेहतर यो रो तो उनको जवाब वो पा ही दे तो जी असा के इन्फॉर्मेशन मिले असाजी नॉलेज में इजाफो थे तो वरी नेक्स्ट असा के उन तीन पहुँचाण में पैं नसल तीन मुंतकिल कर आसानी रहे चवणी ए पहाको जो दे तो उनको भी हवालो मफोम से गड प्रॉपरली रेस्पॉन्स दे तो बबा ही किथे इस्तेमाल होंगे जी पहाका हूँ हण धी के समझे न हो योड़ो पहाको आ तो उनके डिफाइन भी करो पवो तो अवान इन मकसद पे वो हाँ इन मकसद तो माँ ही बुधाई अल कर पहाको बुधा इन मकसद यो आड़े के हिट करे नोट करे पर पैगाम बे तीन पहुँचाण एकड़े जो नाव खड़ी पैगाम बे तीन पहुँचाण यानी कि उर्दू में अगर जैसे इनके इस्तेमाल ये कहें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना तो बी जगह से जो तो उनको असर हों तो असा के बे तीन पैगाम पहुँचाण हो बे के पैं के असा हिट करे असा वो तो शामिल कंदा। अच्छा जी यो तो थी असो लाइव कॉलिंग नंबर अवां के याद भी थी वे होंदो मां स्लोली आराम से भी रिपीट करा 03009319667 इनके अलावा असा जो हेल्पलाइन नंबर है जैसे कॉल करे जो आता मलिक जफर इकबाल एम सिद्दीक साहब से गाल बोल करे प्रोडक्ट के हवाले से फीडबैक पिण दई सको ता ए जेकरे अवां जेके असा या बुधायल जनरल स्टोर्स आहिन जिते असा जी प्रोडक्ट अवेलेबल आहे मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप मिल्क राइस एक्नी क्रीम उनका अलावा जेकरे अवां अवेलेबिलिटी कराण चाहो ता कें जनरल स्टोर ते तवां मलिक जफर इकबाल एम सिद्दीक साहब से गाल कौ असि हेल्पलाइन नंबर से हेल्पलाइन नंबर है 03003105109 जिन ऑलरेडी जिन असल स्टोर से अवेलेबल है असि प्रोडक्ट उन्होंने मजा खुशी जनरल स्टोर मैरापुर फैजान जनरल स्टोर मैरापुर कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर कोरी जनरल स्टोर मैरापुर जावेद जनरल स्टोर मैरापुर अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर।

जी दोस्तों, मदनदास एक खूबसूरत ट्रैक सिंध धरती जी मोहब्बत सा सरशार सिंध जो सुरीलो फनकार फकीर रजब फकीर रजब फकीर जी आवाज में खूबसूरत ट्रैक बुद्धा से धरती माता के भेटा तौर उन्हें न्यू ट्रैक रिकॉर्ड कराया है। उम्मीद तवा सभी के पसंद ही दो अचो तो गजी करे वो ट्रैक एंजॉय क्यों।

हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।

0: वेलकम बैक भलीकार वंस अगेन जी एफ एम 94 मैरापुर जे तमाम सबनी बुधंदड़न के भलीकार खुशामदी जैन वर्षत के आए पखर रागले मिल्क राइस ब्यूटी शो से गड आऊं आया आबिद चौहान अवां बुधी रहा हो जी एफ एम 94 मैरापुर जी दोस्तों मिल्क राइस जो जबरदस्त खूबसूरत प्रोडक्ट्स मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम मिल्क राइस ब्यूटी सोप मिल्क राइस एक्नी क्रीम अवां के ये हर मैरापुर जे तमाम वडे जनरल स्टोर ते मिलंदी जंहिं मंझां खुशी जनरल स्टोर मैरापुर फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर हफीज जनरल स्टोर मैरापुर कोरी जनरल स्टोर मैरापुर जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी कंहिं ॿिए जनरल स्टोर ते कराइण चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर डायल करणो पवंदो असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300-310-5109 हिन ते अव्हां कॉल करे अव्हां ॻाल्हि ॿोल करे सघो था मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक़ साहब सां ऐं हुन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां प्रोग्राम में लाइव कॉलिंग ज़रिए असां सां ॻाल्हि ॿोल करणु चाहियो था प्रोडक्ट जे हवाले सां फीडबैक ॾियणु चाहियो था या वरी का पंहिंजी फरमाइश बि करणु चाहियो था बिल्कुलु फरमाइश बि करे सघो था अव्हां बिल्कुलु ख़ामोश ईअं बिल्कुलु ख़ामोशी चङी ॻाल्हि नाहे ख़ामोशी खे बिल्कुलु टोड़े करे असां सां ॻाल्हि ॿोल कयो असां अव्हां लाइ अची करे प्रोग्राम करे रहिया आहियूं बिल्कुलु इन में को डाउट नाहे त असांजी प्रोडक्ट जी जेका आहे त तारीफ़ ऐं ज़िक्र लाइक़ तारीफ़ आहे ऐं उन सां गॾु उहो जेको आहे त सिलसिलो हलंदो रहंदो ऐं अव्हांजी ज़ाती ॻाल्हि ॿोल खे बि असां प्रेफरेंस ॾींदासीं ज़ाती ॻाल्हि ॿोल में बि साॻी ज़ाती ॻाल्हि ॿोल में बि घुमाए फिराए करे जेकॾहिं ॻाल्हि सूंहं ऐं ब्यूटी हुसन ते अची वेंदी त पोइ उन ते प्रोडक्ट जी ॻाल्हि ॿोल लाज़मी थींदी छाकाणि त असांजी प्रोडक्ट ख़ूबसूरती जो नज़र आहे और भरोसा जो दिलि जीत ले असां सां गॾु लाइन ते कॉलर मौजूदु आहिनि कॉल रिसीव कंदासीं السلام علیکم کیر سائیں کتا کا دادا اوا جو آواز کچھ گھٹ پیو چے
1: سائیں
0: حسین بخشیال نواب سنگت کا حسین بخشیال سائیں ویلکم بلیگار خوش آمدید کیڑا حالن سائیں
1: سائیں الحمدللہ خوش
0: ہیں سائیں کیا تو خوش ہیں اے ون اللہ احسان کتے لہے وسو پیا ہوا جی کال جا سا منتظر ہویا سے
1: खुशखबरी अॼु मां तव्हांजी इहो जेको आहे न मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम ऐं मिल्क राइस ब्यूटी सोप वठी आयो आहियां
0: क्या बात आहे साईं क्या बात आहे लव यू लख लाइक साईं लख लाइक कुर्ब कहिड़ी कहिड़ी कहिड़ी कहिड़ी प्रोडक्ट अथव हा
1: साईं इहो जेको आहे मिल्क राइस जेको ब्यूटी क्रीम आहे न
0: जी जी
1: हा हिकिड़ी डबी हिन जी वरिती आहे हिकिड़ी साबुण जी फिलहाल वरिती आहे यूज कयूं इनशाला
0: बिल्कुलु बिल्कुलु ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो न ब्यूटी शॉप्स में या शॉप्स में असां ज़रूरत ज़िंदगी लाइ रोज़ कुझु न कुझु इस्तेमालु कंदा आहियूं जेकॾहिं असांजी प्रोडक्ट में असां जेका दावा करे रहिया आहियूं उन मूजिबि उहा प्रोडक्ट आहे त पोइ तव्हां ॿियनि प्रोडक्ट्स खे छॾे करे असांजी प्रोडक्ट ते कन्वर्ट थी वेंदो साबुण त घर में हूअं बि इस्तेमालु थींदो ई थींदो आहे
1: बिल्कुलु सर ऐं अॼु मां वठी आयो आहियां अॼु सूमर जो ॾींहुं ऐं मुंहिंजी इहा ख़्वाहिश हुई त जीअं साईं सूमर जे ॾींहुं प्रोग्राम स्टार्ट करे शाम जो त ऐं फौरन इहा ख़ुशख़बरी ॾियां जीअं साईं जन मूंखे वरी जेको आहे न शाबाश ॾियनि
0: न ऐं
1: मुंहिंजी दिलि ख़ुशि कनि
0: हाणे कॾहिं इस्तेमालु कई अथव त पोइ असांखे फीडबैक ॾियो त असां त बिल्कुलु ख़ुशि थियासीं तव्हां इहो ज़बरदस्त कयो आहे
1: साईं हींअर ई जेको आहे न असां जीअं माना आराम जे लाइ तयारी कंदासीं इहा बि इस्तेमालु कंदासीं
0: जी जी जी जी इस्तेमाल खां पोइ वरी असांखे फीडबैक लाज़मी ॾिजो ऐं टे ॾींहं जी घटि में घटि जेको आहे त लाॻीतो इस्तेमाल खां पोइ
1: हिन ई सोप सां वरी सुबुह सवेर ताईं पंहिंजो जेको आहे न इहो चहिरो वरी वॉश कंदासीं
0: बिल्कुलु ईअं ई बिल्कुलु हा अव्हांखे ॼाण आहे अव्हां प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियो मुसलसल जी जी

0: हक देखे जन प्यार मोहब्बत जो गालियों कन ऐं उहो सुबुह थो ॾियनि त गुज़िरियल टाइम में अहिड़ियूं कचहरियूं थींदियूं मच कचहरियूं बि थींदियूं ऐं असांजा वॾा वेही करे मोहबत जूं ॻाल्हियूं कंदा ऐं कॾहिं बि नफ़रत वारी ॻाल्हि न कंदा त असांखे ईअं खणणु खपे त असीं बि मोहबत वारियूं कचहरियूं क़ाइमु कयूं
1: मच कचहरी अव्हांजे ॻोठ या अव्हांजे भर पासे में किथे किथे थींदियूं अव्हां पाण कराईंदा
0: बिल्कुलु सर जीअं सियारो ईंदो आहे न बिल्कुलु असांजी कचहरी
1: मां मच कचहरी मां मच कचहरी किथे बि हुजे अटेंड कंदो आहियां
0: बिल्कुलु सर अव्हांखे असां दिलि जे गहराइनि सां जेको आहे न असां मोस्ट वेलकम चऊं था ऐं तव्हांखे दावत ॾींदासीं
1: दावत ॾियो त ॿुधो असांजो साईं मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम जो ऑनर ऐं जेको आहे ख़ुशी जनरल स्टोर जो ऑनर बि प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे पोइ जेको आहे न उनखां मोकल बि वठी ॾिजो हिन जेको आहे त कंहिं ॾींहं त पोइ उन ते हलिया अचो न त आचर ते हलिया ईंदासीं जंहिं ॾींहं ते ऑफ हूंदो आहे असांजो
0: बिल्कुलु पर जीअं ई माना थोरी थधि अचे ऐं मच कचहरी जो मज़ो बि थिए इनशाला ऐं अव्हांखे जेको आहे दिलि जे गहरनि सां दावत ॾींदोसीं मुंहिंजे लाइ इहा ख़ुशीअ जो ॾींहुं हूंदो जीअं ॼाणे ऐं फिरी पिया अंगण ते कयूं मच कचहरी में शामिल थियो
1: रुगो मां अचां या मिल्क राइस जी पूरी टीम सां गॾु अचां अच्छा ठीकु आहे हूअ अव्हां त परचेस कई आहे उन में को शक न आहे अव्हां जेका ॻाल्हि करे रहिया आहियो शइ प्रोडक्ट परचेस कई आहे इस्तेमालु बि कंदो हूअं त सब जनरल स्टोर जितां तव्हांखे ईज़ी अवेलेबल थिए उतां वठो पर जेकॾहिं ॿुधाइणु पसंदि कंदव त कहिड़े जनरल स्टोर खां अव्हां वती
0: मिठा साईं असां कोशिशि कईसीं त असां मलिक ज़फर इक़बाल वटि वञूं ऐं फिज़िक वटि वञूं पर असांखे उहो स्टोर कोन लधो असां पोइ नालो न पुछियो आहे बरहाल मां इहो ॾिसंदो त मां मेरापुर में वरिती आहे
1: बिल्कुलु मेरापुर में काफ़ी स्टोर ते अवेलेबल आहे जेको आहे प्रोडक्ट जी मां तव्हांखे रेगुलर नाला अनाउंस कंदो रहंदो आहियां ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर कोरी जनरल स्टोर मैरापुर जावेद जनरल स्टोर मैरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर ते पिणु मिलंदी आहे हा त मूंखे थोरी ख़बर पवे न त किथां मिली किथां न मिली ऐं जेको आहे त बहितर थींदो उनजो स्टोर जो अव्हां नाम भले खणणु चाहियो त पंहिंजी संगत खे बि जेकॾहिं तव्हांखे फ़ाइदो रहे थी प्रोडक्ट त पोइ पंहिंजी संगत खे बि रिकमेंड लाज़मी कंदो
0: सर नवाबी संगत मुंहिंजी जेका आहे ऐं हिननि मां मुंहिंजा ॿ दोस्त ॼमी बि अॼु वरिती हुन मुंहिंजे नवाबी संगत वारा न अञा ई मुंहिंजे नवाबी संगत वारा वठंदा ऐं अव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाईंदा अव्हांखे फीडबैक बि ॾींदा
1: अच्छा नवाबी संगत हिन तरह जो इलाइक़े जो नालो आहे ॻोठ जो आहे
0: सर न असांजो हिकिड़ो ग्रुप आहे
1: जी माशाल्लाह मां हक़ीक़त ॿुधायां थो मां कॾहिं कॾहिं डाउटफुल थींदुमि मां चयुमि कहिड़ो इहो सिंध जो शहर आहे ॾाढो प्यारो बि नालो आहे ऐं मुंहिंजे ज़हन में न आहे मुंहिंजे ज़हन में नथो अचे मां चयो आहे छा आहे अॼु दिलि चाहियो त मां अव्हां खां हेलो आहे कयां
0: महिरबानी मुंहिंजो जेको ॻोठु आहे कैची सियाल आहे कालको सोभे दरे में आहे
1: जी जी
0: बाक़ी असां जेको ग्रुप आहे संगत जो नवाबी संगत
1: लाजवाब लाजवाब अच्छा को प्यार जो पैगाम को दिलि जी ॻाल्हि को पैगाम मोहबत जो
0: जेके
1: ॿुधनि था त उन्हनि सॼी संगत खे मुंहिंजे तरफ़ां बि अस्सलाम वालेकुम वॾी महिरबानी पहिरां कुर्ब लक लाइक मोहबतूं थैंक्यू जी दोस्तो हुसैन बख्सियाल साहब नवाबी संगत खां अॼु मुंहिंजो कॉन्सेप्ट क्लियर थियो त नवाबी संगत छा आहे दिलि करे मां जेको आहे सोचे सोचे करे नेठि मालूमात करण जी इहो जेको आहे त जसारत कई मूं चाहियो त इहो मुंहिंजे इंफॉर्मेशन में इज़ाफ़ो थिए त नवाबी संगत ॻोठ जो नाम आहे या शहर जो नाम आहे अच्छा सोशल मीडिया ग्रुप आहे दोस्तनि जो रजिस्टर्ड ग्रुप आहे ऐं उनमें दोस्त जुड़ियल आहिनि बाज़ौक ऐं बाशूर दोस्त ॾाढी ख़ुशी थी इहा ॼाण रखी करे अहिड़ियूं कमेटियूं अहिड़ा सोशल ग्रुप्स ॻोठनि में हुजणु घुरिजनि

0: तमामु ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन ऐं पार्टिसिपेशन दोस्तनि जी. दोस्तनि यकीननि इहो सम्झो सोचियो त पोइ हाणे साईं सां जेको आहे ॻाल्हि ॿोल कजे. साईं मां मुरादु आहे, मां नाचीज़ आबिद चौहान, आर जे आबिद चौहान, अवां जो ख़ादिम मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु, अवां सां गॾु आहियां हिन महिल ताईं. ऐं असांजो ऐं अव्हांजो साथ रहंदो 9 वॻे ताईं आहे. हाणे दोस्त सम्झी विया आहिनि त ॻाल्हि ॿोल करणी आहे साईं सां, त पोइ कॉल असांखे अची रही आहे. सो असां हिकु कॉल शामिल कंदासीं, पोइ देन असां हिकिड़े ज़बरदस्त ख़ूबसूरत म्यूज़िक ट्रेक ॾांहुं पिणु वधंदासीं. अचो त दोस्त सां ॻाल्हि ॿोल कयूं. अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं, किथां खां? जी वाह, हलो, अदा आवाज़ आहे मुंहिंजो घटि पियो हुजे. जी
1: भाउ,
0: महबूब अली शहर ठहरी मीरवा खां वेलकम भलीकार, ख़ुशामदीद प्यारा. A1 मुंहिंजा जानी अड़ा A1, अवां पंहिंजा ॿुधायो. बिल्कुलु मौजनि में आयो. अकेला ॿुधो पिया, अकेला ॿुधो पिया, संगत सां गॾु ॿुधो पिया प्रोग्राम? न न, मूं चयो अकेला ॿुधो पिया, संगत सां गॾु ॿुधो पिया. संगत सां गॾु, संगत जा पहिरियों नाव शामिल कयो, पोइ असां चऊं था सवाल जवाब ॻाल्हि ॿोल ते. माशाल्लाह लाजवाब. सॼी संगत खे मुंहिंजे तरफ़ां सलाम. का गुजार त को पिरोली को संगत बि ॿुधे अवां जी, ऐं ॿी संगत बि GFM 94 जी सॼी संगत मेहरापुर पूरो ॿुधे. जी अलाह, जलाल त हाणे उस्तादु आहे न सभिनी जो. ममताज़ बि चांडियो आहे, जलाल बि चांडियो आहे, त पोइ चांडियो त उस्तादु आहे न जलाल. हा बिल्कुलु बिल्कुलु, अॼु शामिल कयूं था, अॼु शामिल कयूं था ममताज़ मोलाई जेको गीत असां शामिल कयूं था. कुर्ब प्यारा, प्रोडक्ट जे हवाले सां भला को थोरो घणो ॻाल्हाइण न चाहींदो? कॾहिं थींदो चकर, कॾहिं थींदो, कॾहिं थींदो? हाणे ॿुधो ठहरी मीरवा में तव्हां असांजी हेल्पलाइन नंबर ते कॉल कयो. नंबर मां बार बार रिपीट थो कयां, ठहरी मीरवा में बि साईं वारा तव्हांखे अवेलेबल करे ॾींदा. 0300-310-5109 हिन ते कॉल करे मलिक ज़फ़र इक़बाल साहिब सां ॻाल्हि ॿोल कयो, ऐं या एम सिद्दीक़ साहिब सां. हा सिंधी में ॿुधो, सिंधी में ॿुधो. 0300-310-5109. ॿीहर नोट कयो, जेकॾहिं नोट न थियो आहे त 0300-310-5109. ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ, सारी वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी. लव यू, लख लाइक, थैंक यू, ओके. जी दोस्तों, वधंदासीं हिकु ख़ूबसूरत म्यूज़िकल ट्रेक ॾांहुं, ऐं ट्रेक इंजॉय कयो, हुन खां पोइ वापसि वरंदासीं वरी.
2: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आउं आहियां आबिद चौहान। मूंसां गॾु आहे हिकिड़ो कॉलर, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केरु प्यारा किथां खां? रहमान अली साहब, वेलकम भली ॻाल्हि, ख़ुश आमदीद प्यारा। दुआऊं भा अलाह जा एहसान, तव्हां ॿुधायो।
1: शुक्र अलहमदिल्ला पई थी गुज़रे साईं।
0: प्रोग्राम कीअं पियो लॻे?
1: माशाल्लाह तमामु ज़बरदस्त ऐं तमामु सुठो ऐं बहितरीन पियो लॻे।
0: ऐं प्रोडक्ट जे हवाले सां छा ॻाल्हि ॿोल करणु चाहींदो? भला हिन महिल ताईं इस्तेमालु कई या कयो था?
1: सर, प्रोडक्ट बिल्कुलु इस्तेमालु थिए पई ऐं कुझु दोस्तनि खे मशवरो ॾिनो आहे ऐं उहे बि इस्तेमालु कनि था पिया ऐं बहरहाल असां बि कयूं था। तमामु सुठो प्रोडक्ट आहे।
0: तव्हां इस्तेमालु कयो पिया?
1: जी जी।
0: कॾहिं परचेज़ कई?
1: सर, हिन खे थी वियो आहे हिकिड़ो हफ़्तो खनि।
0: हफ़्तो खनि थी वियो आहे? गुड यार, ग्रेट ग्रेट। पोइ छा इस्तेमाल में रिज़ल्ट कीअं थो अचे? ईअं पोइ ॿियनि दोस्तनि खे बि रिकमेंड कयो था?
1: हा बिल्कुलु बिल्कुलु।
0: ऐं पाण बि इनखे घर में बि अप्लाए कयो, रेगुलर इनखे रुटीन में आणियो। असां साबुण त ॿिया बि इस्तेमालु कंदा आहियूं आम, पर हीअ त ब्यूटी सोप आहे ऐं एतिरो कॉस्टली बि नाहे। घर जा सभु भाती भले इस्तेमालु करे सघो था। छा चवणु चाहींदो को अॼोके हवाले सां, टॉपिक सां, को चवणी, को मुहावरो, को पहाको, का गुजारत ॾियणु चाहींदो हुया?
1: बसार साईं, इहो ई आज मिसाल, अॻु में जेके वॾा हूंदा हुया, किचरियूं कंदा हुया, गुफ़्तगु कंदा हुया ऐं ख़ासि करे बहरहाल जेके सियारे जे मौसम में मच किचरियूं हूंदियूं हुयूं, त उन्हनि में इलाही हिकिड़ा गुफ़्तगा थींदा हुया ऐं तमामु हिकिड़े सुठनि मौज़ुनि ते ॻाल्हायो वेंदो हुओ। बहरहाल अॼु जेको उहो दौर आहे उहो न रहियो आहे साईं एतिरो,
0: बहाल रहनि। ॿुधायो, को पहाको, को चवणी, को पिरोली, का गुजारत?
1: हलो,
0: दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो? हुसैन बख्शा साॻी नवाबी संगत मज़ा आहे। इहो ई साॻियो साईं हुसैन बख्शियाल।
1: वाह
0: वाह, सलामत हुजो साईं, अवां सॼी संगत खे सलाम। कुर्ब
2: मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहराबपुर, 03000310509, 03000310509। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है

0: जी दोस्तों, असाना गद लाइन देख लो कॉलर मौजूद है। बिफोर के मां रिसीव किया वो कॉल लिसनर थी वने। अस्सलाम वालेकुम, केर सही के था का
1: नवाबी संगत ना मंजूर पुलपुर रो खैरापुर मीरत का
0: सर। मंजूर पुलपोटो साहब वेलकम बलिकार, खुशामदीद सजी नवाबी संगत के वेलकम बलिकार। यार कमाल आवाज जी संगत है। जमा गाल बोल कई हुसैन बक्सियाल साहब सा तो मुख्य अजू खबर मां समझो तो नवाबी संगत को गोठा को इलाको को यूसी आ को तररा को वाहणा का वस्ती आ, पर न नवाबी संगत आवा जो रजिस्टर्ड सोशल ग्रुप आ है।
1: जी जी ग्रुप आ जरा सा जो करा पर जो
0: छा इन ते छा इन ते वर्कआउट कंदा सोशल छा कामकार हुंदो आवा जो।
1: जी जी सर
0: इन ते छा केड़ो कामकार हुंदो आ इन संगत जो
1: असाई संगत जो पाड़ा में ग्रुप ठायो आ जलदा कंदा है सलाह मशवरो कठो कंदा
0: इन ते इन ते को सोशल काज भी त कयो ना को हेल्प सपोर्ट को मानन जी को गोठ जी को फलाह को बहबूद एड़ो कामकार भी त कयो ना
1: इंशाल्लाह ही आप सलाह कई आई आ भी कंदा
0: हां ना दोस्त दोस्त जुड़े आओ या संगत सजी सलामत रहे उन ते को बियो कामकार भी थिंदो रन सिर्फ चाय जे कप ते कचरी त न हले ना पो एड़ा कम भी होजन जे मजा को बेन के फायदो भी पवे इन संगत मा शिकवा शिकायतू न हुजन त फलाणो कुछ नथो ॾे फलाणो कुछ नथो ॾे बजाए जो असां चाइनीज़ चवणी आहे त कंहिंखे शइ का पकड़े ॾियण खां बहितर आहे त उनखे पकड़णु सेखारिजे। उन्हनि मच्छी जी मिसाल ॾिनी पर असां कंहिं बि शइ ते चऊं था त आंगुर खां वठी वठी केतिरो असां कंहिंखे कहिड़ी शइ उन्हनि खे कुझु एजुकेट कजे कुझु अवेयरनेस ॾिजे कुझु फलाही कमु पाण कजनि पर फलाह सां गॾो गॾु माण्हुनि खे मोबिलाइज़ कजे सोशल ऑर्गनाइज़ कजे त बाबा असां पाण बहम था न थियूं त असां पंहिंजे ॻोठ जा तर जा ॿियनि जी वाह न ॾिसूं रुगो डिपेंड न कयूं त ॿाहिरियों को ईंदो असांखे कमकार करे ॾींदो असां पंहिंजे ॻोठ जा माण्हू पाण पंहिंजे ॻोठ जी फलाह बहबूद करे सघूं था। टॉपिक हुजे जीअं अॼु असां रेडियो ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था त पैगाम बि पहुचायूं था सोशल बि अमन जो बि प्यार जो बि मोहबत जो बि त रुगो अवां हुन में पैगाम न पहुचायो हुन में अवां गैदरिंग करे अहिड़ा कमकार बि कयो कि अवां जे लिस्ट में नाम ऐं अमाल में ज़िंदगी भर ऐं ता क़यामत उहे लिखजी वञनि अहिड़ा बहितर कमकार हुजनि। रोज़ो निमाज़ पिण चङो कम रोज़ो निमाज़ पिण चङो कम पर उहो फर्म को ॿियो जंहिंसां पसी प्रीअ खे उहो कमु इहो ई आहे त इंसान जी ख़िदमत आहे इंसान सां प्यार आहे इंसान सां मोहबत आहे। छा चवणु चाहींदो तव्हां खां वधीक मां ॻाल्हाए वियमि मुंहिंजा भाउ, छा चवणु चाहींदो ॿियो कुझु को पहाको को चवणी को ॿुधाइणु चाहींदो? तारीफ़ सभ खे वणंदी आहे पर इहे मोहबतूं अवां जूं आहिनि अवां सां ई असांजो प्रोग्राम आहे ऐं मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाज़मी इस्तेमालु कयो ऐं हिन महिल ताईं न वरिती आहे त संगत मंझां लाज़मी सभु हिन ग्रुप में बि मैसेज रखो त पोइ संगत सॼी रिकमेंड करे जंहिं इस्तेमालु कई आहे हुसैन बख़्श आंदी आहे पोइ ॿिया दोस्त इस्तेमालु कनि ऐं जेकॾहिं शइ असांजी बहितर आहे वैलिड आहे त पोइ उनखे ॿियूं प्रोडक्ट्स उन्हनि खे साइड करे असांजी प्रोडक्ट ते घर में उहा इस्तेमालु थिए ईअं न भाउ। संगत खे सलाम कंहिंखे दुआ को नियापो
1: वॾी
0: महिरबानी लख लाइक़ वालेकुम सलाम अवां जी सॼी संगत खे सलाम कुर्ब प्यारा।

0: ऐं इन सां गॾु अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान आबिद चौहान खे ॾींदा इजाज़त ऐं अवां कंदा ही आख़िरी अॼोके प्रोग्राम जो म्यूज़िक ट्रैक इंजॉय। मिलंदासीं वरी सुभाणे नए टॉपिक नई ॻाल्हि ॿोल सां गॾु। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान आबिद चौहान खे इजाज़त ॾींदा। सिंध सलामत, साध सलामत, अल्लाह निगहबान।
1: और खीर महासी फॉर

रहे ऐं चूंडू वक़्त ते थियनि। इजलास एजेंडा पहिरियां ई तय हुई। एमक्यूएम मकानी बिल मंज़ूर थियण खां पहिरियां ज़रूर पढ़ियो हूंदो।

सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल न थे यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई के लॉन्ग मार्च खिलाफ दरख्वास्त फैसलो बुधा छो। अदालत चो तो कें भी सरकारी मुलाजिम के एहतजाज में शरीक थे मजबूर न किया वे। सूबाई हुकूमतू एहतजाजन सरकारी वसीलन जो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर।
2: 0300-338-5569।
3: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम। 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल। 0300-320-04372 आई 0242-460100।

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ। चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ। रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ। रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐ सचाई लबनते मुर्का विखरल दिलन में आ बेआई। चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनी आ। चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ।

अखिन में अञा बि उहे ख़्वाब आहिनि। अखियुनि में अञा बि उहे ख़्वाब आहिनि, असांजे ॾुखनि जा नवां बाब आहिनि। अखियुनि में अञा बि उहे ख़्वाब आहिनि, असांजे ॾुखनि जा नवां बाब आहिनि। टिड़ियाहनि सहरा जे हंझुनि में कतरा, टिड़ियाहनि सहरा जे हंझुनि में कतरा, असांजे बि आङुरियुनि में गुलाब आहिनि। हूअ जीअं बि असांखे विसारणु चाहिनि, हूअ जीअं बि असांखे विसारणु चाहिनि, असांजा तंहिंजे यादुनि में महताब आहिनि। हूअ जीअं बि असांखे विसारणु चाहिनि, असांजा तंहिंजे यादुनि में महताब आहिनि। हकीकत खे जंहिं पिण लिकाइण चाहियो, हकीकत खे जंहिं पिण लिकाइण चाहियो, तन मथां असांजे कलम जा किताब आहिनि। असांजो बि लेखो थींदो हिकु ॾींहुं, असांजो बि लेखो थींदो हिकु ॾींहुं, जॾहिं सिंधूअ जे लहरनि सां हिसाब आहिनि। नवीद ॾिस त पोइ बि खिली पिया आहियूं, नवीद ॾिस त पोइ बि खिली पिया आहियूं, जेके ज़ख़्म तो ॾिना उहे नायाब आहिनि।

प्रोग्राम दिल जी गाल आएं जीएफएम नेटवर्क जे बुधंदड़ तमाम सबनी महबूब दिलबर दोस्तन के वेलकम भलीकार खुशामदी।

दोस्तों अछूत गज्जी ये खूबसूरत म्यूजिकल ट्रैक एंजॉय किया।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100
4: नूरे जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो ॿुधाइनि पिया भला इहो त ॿुध ऐं वठी अच
5: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा
6: हा भाग भरी चङो थो लॻे मां हाणे ई थो वठी अचां
7: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
8: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर

0: बाजार बेहरापुर
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

सूं तुंहिंजी सॼण कीअं बयां मां कयां। आहे खुशबू गुलनि में ई तुंहिंजे करे, आहे खुशबू गुलनि में ई तुंहिंजे करे, मस्ती आहे मौसमनि में ई तुंहिंजे करे। आहे खुशबू गुलनि में ई तुंहिंजे करे, मस्ती आहे मौसमनि में ई तुंहिंजे करे। आहीं गुलड़नि खां नाज़ुक तूं मुंहिंजा मिठा, आहीं गुलड़नि खां नाज़ुक तूं मुंहिंजा मिठा, गुल सां तोखे पिरीं छो मां तशबीह ॾियां, सूं तुंहिंजी सॼण कीअं बयां मां कयां, तोखे हूर परी या ॿियो कुझु चवां।

आवाज़ तुझो मिठो माखी मेवन खां वध, आवाज़ तुझो मिठो माखी मेवन खां वध, नेण तुझा तिखा तेज तीरन खां वध। आवाज़ तुझो मिठो माखी मेवन खां वध, नेण तुझा तिखा तेज तीरन खां वध, नेण जड़हें खणी मन मोहे विझी, नेण जड़हें खणी मन मोहे विझी, बची तुझी निगाहुन खां काडे वन्या, सूं तुझी सजण की बयां मां कयां, तुखे हूर परी या बियो कुछ चवां।

मोर तुझी दिसी मोर टोरूं टोरन। टोर तुझी दिसी मोर टोरूं टोरन, वार छोड़ी जदें ककर खड़की पवन। टोर तुझी दिसी मोर टोरूं टोरन, वार छोड़ी जदें ककर खड़की पवन। ठायो आहे तोखे पाण वेही खुदा, तुझी तारीफ आबिद माबीछा लिखा। टोर तुझी दिसी मोर टोरूं टोरन, वार छोड़ी जदें ककर कड़की पवन। ठायो आहे तोखे पाण वेही खुदा, तुझी तारीफ आबिद मां बीछा लिखा। सो तुझी सजण की बयां मां कयां, तोखे हूर परी या बियो कुछ चवां। चंड तुझे हुसन जी खैराता, चंड तुझे हुसन जी खैराता, दस तोखे भला चंड कीअं मां चवां। सो तुझी सजण की बयां मां।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गल सा गड आऊं है आबिद चौहान आवां बुधी रहया हो जीए एफएम नेटवर्क जी दोस्तों बिल्कुल यकीनन अवां के इंतजार हुंदो असाए प्रोग्राम में लाइव कॉल वसीले असा सा ए सजी सिंध सा गाल बोल करण जे लाए अवां बेकरार हुंदो ए यकीनन मां बे अवां सा गाल बोल करण लाए शदीद बेकरार आहियां। कॉलिंग जो सिलसिलो स्टार्ट कंदासीं जेके दोस्त असां खे अॼु ट्यून करे रहिया आहिनि या नवां दोस्त जेके ट्यून करे रहिया आहिनि उन्हनि खे पंहिंजो लाइव कॉलिंग नंबर ॿुधाईंदो हलां त असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488। असां सां गॾु लाइन ते कॉलर मौजूदु आहिनि, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیں ربنوں پھل پوٹو راضی گو خیر پر میرا
0: رب دینو پھل پوٹو
1: جی سر
0: کیڑو گوٹ پیرا
1: راضی گو سر خیر پر میرا
0: خیر پر میرا غازی گوٹ ویلکم بھلی کار خوش آمدید پیرا
1: مہربانی سر مہربانی خیر اسیں امن لو گیا
0: اللہ جا احسان پروگرام کدے گا بدھو پیا اسا جو
1: तव्हांजो प्रोग्राम साईं असांखे हफ़्तो थियो आहे पिया ॿुधंदा ईंदा आहियूं।
0: हफ़्तो बर्दाश्त कयो अथव असांखे।
1: हा साईं बिल्कुलु, ॿीहर तव्हांखे फरमाइश बि कईसीं, जलाल लाॾो ॿुधायो, उहो कोन ॿुधायो।
0: लाॾो माना हिकिड़ो शादी विहांउ जो गीत न आहे, रातो की महफ़िल में दोस्त रोमेंटिक पोएट्री ॿुधण चाहींदा आहिनि मां सम्झां थो। त पोइ लाॾो हिकिड़ो पर्टिकुलर हिकिड़ो मखसूस इवेंट ते न थी वियो?
1: न उहो आहे माना संगत जो थोरो माना इहो
0: जी
1: चयो त असांखे असांजे थोरो आहे शादीअ बाजीअ थोरो
0: ॾिसो अर्ज़ु ॿुधो न हिते अव्हांखे असांखे दरे घटि अधु सिंध बल्कि अधु सिंध खां मथे ॿुधी रही आहे, मुनी सिंध ॿुधी रही आहे। त पोइ उन में फ़क़ति हिकिड़े घर में जंहिंमें शादी विहांउ जो ख़ुशीअ जो महल मोकियो आहे त असां पंहिंजे प्रोग्राम जे पूरे पैटर्न खे तब्दील करे लाॾनि ऐं सहरनि ॾांहुं खणी वञूं, त मां सम्झा पियो त इहो ॿियनि दोस्तनि जी हुन में थी वेंदो, पर इहो आहे त मां हुनखे ॿुधी ॾिसंदुमि इनफ़रादी तौर ते त उहो छा कीअं असांजे हिन पहर में जेको असांजो ट्रेंड हली रहियो आहे रोमेंटिक पोएट्री ऐं शेरो शायरी। लाॾो ॿिए कंहिं प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं अवां लख थोरा अवां जी क्या बात आहे साईं, लव यू। उमेद थो कयां तव्हां नाराज़ बि न थींदो, मां हुनखे कोशिशि कंदुमि त ॿुधां ऐं ॾिसां कंहिं न कंहिं ॾींहं ते इवेंट ते असां शामिल करण जी कोशिशि कंदासीं।
1: महिरबानी।
0: दोस्तनि जा नाम खणणु चाहींदो, शामिल करणु चाहींदो? अब्दुल वहीद जतोई खे बि सलाम, अव्हांजी ॿी सॼी संगत खे सलाम। ऐं प्रोग्राम ॿुधायो प्यारा, असां कंदासीं अव्हांजी कुर्ब प्यारा लख तोरा। दोस्तो ॻाल्हि कुझु हिन रीति आहे त मूंखे बिल्कुलु बे मज़ो कोन ईंदो आहे जॾहिं आऊं अव्हांजी फ़रमाइशूं पूरी कोन करे सघंदो आहियां। मूं मजबूर थी करे जेको आहे त इन क़िस्म जो अहिड़ो रिस्पॉन्स ॾिनो त अव्हांखे डिफाइन करिणो पियो, अदरवाइज़ असां का फ़रमाइश पूरी करे सघंदा आहियूं का न करे सघंदा आहियूं। उन जे लाइ मां आऊं एडवांस में ई हथ ॿधी मादरत कंदुसि। असांजे प्रोग्राम में अव्हांजो रिस्पॉन्स तमामु प्यारो आहे, अव्हांजे करे ई असांजो प्रोग्राम आहे। कॉल असांखे कंटिन्यूसली मौसूलु थी रही हूंदी आहे पर ॻाल्हि ॿोल बि करणी हूंदी आहे, ऐं कॉलर सां ॻाल्हि करे त मूंखे बेहद मज़ो ईंदो आहे। कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केर पहिरां किथां खां? हुसैन मीराणी। पनो अकिल खां हुसैन मीराणी, कहिड़ा हालनि मुंहिंजा भाउ? वेलकम भलीकार प्रोग्राम में। लख तोरा कुर्ब मोहबतूं
2: सर, कुछ लगो
0: ए वन अल्लाह जा एहसान। अवां पंहिंजा ॿुधायो।
2: खैर लॻो,
0: प्रोग्राम अवां रेगुलर ॿुधंदड़ आहियो?
2: हा सर,
0: प्रोग्राम रेगुलर ॿुधो पिया। असां कंहिंखे बाउंड कोन कयो आहे. मां हर भेरे कोशिशि कंदो आहियां त उन्हनि जे दिलि जी ॻाल्हि ॿुधां, छाकाणि त प्रोग्राम जो नाम बि दिलि जी ॻाल्हि आहे. दिलि जी ॻाल्हि खे पोएट्री वसीले यानी की शायरी वसीले ॿिए हंधि मुंतकिल करणु, ॿियनि दोस्तनि ताईं पहुचाइणु उहो आसान हूंदो आहे बनिस्बतन ड्रिघी कंहिं तकरीर जे. सो अवां असां सां कनेक्ट जुड़िया रहंदो. हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक जो. सो दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहियो त असां शामिल करे छॾियूं.
2: हा सर, मुंहिंजो मीराणी साहब
0: जी
2: अॼु सर दिलि जी गुलाम शफ़ी
0: जी शॉर्ट कजो, टाइम थियो आहे ब्रेक जो, पोइ वरी विरंदासीं वापसि. असां इहो प्लेलिस्ट में शामिल बि कयूं था, ट्रेक अवांजी सॼी संगत खे डेडिकेट कंदासीं. वॾी महिरबानी पहिरां प्रोग्राम में कॉल करण लाइ. थैंक यू, लव यू. वक़्तु आहे हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक जो, वरंदासीं ब्रेक खां पोइ.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

जी दोस्तों असां म्यूज़िक ट्रैक ॾांहुं वञूं या अञा कॉल अटेंड कयूं। मां चाहींदो आहियां त थोरो असांखे वित्ती मिले त पोइ असां म्यूज़िक ट्रैक ॾांहुं वञूं, पर अव्हां जूं मोहबतूं कंटिन्यू हली रहियूं त पोइ कॉल शामिलु कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं, किथां खां लॻे थो कॉल मिस थी वई। वित्ती नज़र अचे पई त मां हिकु म्यूज़िकल ट्रैक ॾांहुं वधां, उन खां पोइ वरी वापसि अव्हां जूं कॉल्स अटेंड कंदासीं।

0: GFM Network पर KTN News.
1: May be taken into consideration by the assembly at once. Now I put the motion to the house. Those who are in the favor may say aye, and those who are against it may say no. I David, and the motion is carried.
2: काउंसिल जो मुद्दो खत्म थियण ते मेयर ऐं चेयरमैन जी एडमिनिस्ट्रेटर जा अख़्तियार संभालींदा. डेप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन खे काउंसिल जो कन्वीनर मुक़ररु कयो वेंदो. यूसी चेयरमैन गैर क़ानूनी अॾावतुनि जी निशानदही करे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीअ खे इतलाह ॾियण जा पाबंद हूंदा. सिंध असेंबली अपोज़िशन जे गोड़ दौरान मकानी क़ानून में तरमीम लाइ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2026 अक्सरियत राय सां मंज़ूरु करे वरितो. बिल में सुलह वारे फोरम जो इज़ाफ़ो. 90 ॾींहनि अंदरि फोरम क़ाइमु करणु लाज़मी हूंदो. सुलह वारो फोरम अवामी मसइलनि जे हल लाइ पुलिस सां राब्तो करे सघंदो. मकानी इदारा इलेक्शन कमीशन खे मुदो मुकमल थियण खां 120 ॾींहं अॻु चूंडू कराइण लाइ ख़त लिखंदा. बिल जी मंज़ूरीअ दौरान मुखालिफ़ धुर पार्टियुनि जो सख़्तु एहतजाज. स्पीकर जे 2.5 साल नारेबाज़ी बाद एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं. ऐवान मां वॉकआउट.

मुखालिफ़ धुर मकानी कानून में तरमीम वाले बिल के रद्द कर छोड़ो अदालत वन ऐलान। अपोजिशन लीडर अली कुर्शीदी है तो सियासी आमरीत हली रही है। असेंबली सेशन में बिजनेस के एक तरफ कर एक तरफो बिल मंजूर किया वो। सिंध हुकूमत यो बिल मंजूर कर अदालती फैसले की भी तोहन कई है। जमात इस्लामी के मेंबर मोहम्मद फारूक जो चवण है तो यो बिल जमहूरियत दुश्मन है जै खिलाफ अदालत से राबो किया। लोकल बॉडी एक्ट में अख्तियारी ना इन तरमीम जरिए सियासी चूंडियल मानू चूंड न थे की सूरत में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बणजी वा। पीटीआई मेंबर शबीर कुरैशी 2023 में हॉर्स ट्रेडिंग जरिए मुर्तजा वहाब के मड़ो वो वरी इो ही मानू हों तो मकानी चूंड में धांधली जो खदशो यकीन में तब्दील थी वो इन बिल के मुकम्मल तौर रद्द कन था। सिंध हुकूमत ऐवान में एमक्यूएम के रवैये के गैर जमहूरी करार दे छो। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील महमद है हर निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश होंगी है। एमक्यूएम अज भी पैंकी पुरानी रवायत बरकरार रखी खेन जान हुई तवाम में उन्होंने मकबूलियत ना तेरे मकानी चूडन का भजी वह हुआ। पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट जो निज़ाम सिंध का सवाए किथे भी ना। इलेक्शन कमीशन केतरा भेरा चूडन ला लिख पर पंजाब हुकूमत हुक्म हवा में उड़ाए छा। सूबाई गरीब वजीर ज़ियाल अंजार जो चवण है तो एमक्यूएम जो असेंबली में रवैयो गैर जमहूरी हो बिल से एतराज़ हो तो स्टैंडिंग कमेटी में मामलो उथारीन हा। सिंध हुकूमत चाहे थी तो बलदियाती निज़ाम जो तसलसल बरकरार रहे चूंडू वक्त सिर थन। इजलास एजेंडा में पे ही तय हुई एमक्यूएम बलदियाती बिल मंजूर थियण का पे जरूर पढ़ो हों। कें भी सियासी जमात वट इस्लामाबाद जा रस्ता बंद करण जो अख्तियार ना है। सूबन जा वड़ा वजीर इहतजाजन लाए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल न थियण के यकीनी बनाएन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पीटीआई के लॉन्ग मार्च खिलाफ दरख्वास्त फैसलो बुधाए छो। अदालत चो तो कें भी सरकारी मुलाजम के इहतजाज में शरीक थियण लाए मजबूर न कयो वञे। सूबाई हुकूमतूं इहतजाजन लाए सरकारी वसीलन जो इस्तेमाल थियण न दियन। कें सियासी जमात या अगवाण के भी शहर के चुरपुरा डंडक विझण जो भी अख्तियार ना है।

इस्लामाबाद की दहशतगर्दी ट्रोल अदालत खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सोहेल आफरीदी समेत पीटीआई के 24 पार्लियामेंट्रियंस का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे छोड़ो। असद कैसर, शाहराम तुर्कई, शाह अहद, शेर अली अरबाब, मोहम्मद इकबाल आफरीदी और डॉक्टर अमजद अली जहा भी पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। एफआईए के जुनेद अकबर, शाहिद खटक, जुबेर वजीर, उमर अयूब, अरशद उमर जई एन जहाँ पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दिनों वो। अदालती फैसले में है तो जवाबदारन से रियासती इदारन हमलन दहशतगर्दी के हथी डण जड़ा संगीन इल्ज़ाम आहिन।